0: रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें

0: गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्ययोजना कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्ययोजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया, जो समानांतर यात्राओं से एकीकृत भविष्य के लिए तैयार साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल शोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र, बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता की थी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एबीवीपी के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में 0.7% की बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 561 अंक बढ़कर 77,065 पर और निफ्टी 179 अंक की बढ़ोतरी के साथ 24,061 पर था। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said India and Australia are true, vibrant democracies, two multicultural societies and two significant ocean powers whose shared values and common worldview continue to strengthen mutual trust between the two nations. Speaking at a joint press statement along with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne, the Prime Minister said the comprehensive strategic partnership has made unprecedented progress over the past few years and the summit has added new dimensions to bilateral cooperation.
0: Comprehensive Economic Cooperation Agreement यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन-विन होगा। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है।
2: The Prime Minister said Indo-Pacific is not just a meeting point of

0: to oceans, but it also represents the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia. He said India and Australia have reaffirmed that cooperation in defence and security is the cornerstone of the partnership in an increasingly complex strategic environment.
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी हम शिप बिल्डिंग शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की
0: Prime Minister Modi said India and Australia have taken a major step forward in the field of nuclear energy by signing a significant agreement that will enable the supply of uranium.

0: dentro. लेकर ढेर सारी जानकारियां और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। आज के अंक में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी कल्पना,
1: और मैं हूं रश्मि कुकरेती। इंद्रप्रस्थ चैनल के सभी सुनने वालों को और आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड चैनल के सभी सुनने वालों और कल्पना तुम्हें भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: मेरा भी नमस्कार। और हमने ये तो बताया ही नहीं कि भाई एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे दोस्त जो है वो हमें सुन सकते हैं, और मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी कि इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी हमें सुने आप। और हम रोजाना अपने श्रोताओं से एक प्रश्न पूछते हैं, तो आज भी हम वो प्रश्न पूछेंगे। तो आपको बतानी है
1: जी, बड़ा रोचक सा प्रश्न है, और क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और हम सब चाहते हैं हमारे पूरे देश भारत में संतुलित बारिश होती रहे। हमारा जो देश है, हमारा पूरा भारत देश अन्न धन से भरा रहे, है ना?
0: बिल्कुल भरा रहे। और जब बारिश होती है ना, तो हमें अपना बचपन बड़ा याद आता है। तो मैं वहीं से एक प्रश्न लेकर आई हूँ, वही मैं आज अपने दोस्तों से पूछना चाहती हूँ कि उन्हें बताना है कि उनके बचपन की एक मासूम सी शरारत क्या है, और उन्हें
1: और अगर करना है। वो

0: शरारत थोड़ी मासूम ना हो तो
1: कोई बात नहीं,
0: शरारत बता दीजिए
1: बस शरारत बता दीजिए, अगर आपको अपनी याद आती है अपनी बता दीजिए, या फिर अपने बच्चों की याद आती है तो वो भी बता सकते हैं आप, बस शरारत आपको बतानी है कि बचपन में क्या क्या आपने शरारतें देखी हैं और की हैं। और हमें ईमेल करना है fmgoldga@gmail.com पर,
0: fmgoldga@gmail.com पर हम इंतजार कर रहे हैं आपकी मासूम शरारत सुनने का। और आइए इसी प्रकार से आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं इस खूबसूरत विचार के साथ, जो मैंने कहीं पढ़ा था कि समय पर समय देने वाले लोग सही समय पर मिल जाएं तो समय बदलते भाई देर नहीं लगती कल्पना।
1: बिल्कुल, तो ऐसे लोगों को हमें संभाल कर रखना चाहिए और उन्हें ये बताते भी रहना चाहिए कि भाई उनके होने से ही हमारा जो जीवन है ना वो बहुत सुंदर है।

0: वो आलू जमीन में खोद कर लगाया था और फिर उसे रोज खोद खोद कर देखती थी कि आलू आए कि नहीं, और साथ ही उन्होंने 50 पैसे भी जमीन पर दबा के रखे थे कि शायद उसका पेड़ आ जाएगा, पर पेड़ तो नहीं आया, पर वो पैसे भी चले गए, तो वो भूल गई, बाद में उन्हें बहुत दुख हुआ। वाकई ये तो बहुत ही मासूम शरारत है, छोटे बच्चे ऐसा कर सकते हैं ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही प्रदीप खंडेलवाल जी हमें लिखते हैं कि मेरी उम्र उस समय शायद 14 साल रही होगी, भांजा घर आया हुआ था, उसका जड़ूला नहीं उतरा हुआ था, उसके बाल इस कारण बड़े हुए थे, मैंने चाबी वाले हेलीकॉप्टर खिलौने में चाबी भरकर उसके सर पर रख दिया और उसके बाल उलझ गए, जैसे जैसे भैया ने सुलझाना चाहा बाल खींचने के कारण वो बहुत रोया। हाँ। मेरी बहुत पिटाई हुई होनी थी फिर
0: जी। बिल्कुल, नवीन भाटिया जी कह रहे हैं कि 9th में था और घर से निकला था, दोस्त के घर जा रहा था और फिर बारिश में भीगते भीगते साइकिल में काम जिसे कहते हैं ना, 1 घंटा घूमता रहा, खूब भीगा खूब नहाया, और मुझे लगता है उसके बाद तो शायद घर में पहुंचे होंगे, जुकाम वगैरह तो घर में डांट भी पड़ी होगी, भाई ये कहां से क्या कर रहे थे तुम बारिश में, है ना।
1: सही है, शरारतें चल रही। तो एक शरारत भूमिका शुक्ला ने लिख के भेजी है कि भाई मैं पढ़ने में थोड़ी वीक थी, तो जब मेरे पेपर स्टार्ट होते थे तो हमारे चाचा जी जो हमें पढ़ाते थे वो मेरा पेपर चेक करते थे, तो मैं उनके आने पर सोने का नाटक करती थी ताकि वो मुझे कुछ डांट ना पाए और अच्छा। कुछ पूछ ना पाए।
0: और देखिए एक और मेल आया है, राधा वासु रोहिणी से कह रहे हैं कि मैं तो बारिश होते ही कागज की नाव बनाकर सड़क पर भरे पानी में तैरने डाल देती थी, और मेरी जब शादी पक्की हुई, अच्छा उसके बाद भी जब बारिश हुई तो मैंने कागज की नाव बनाई तो सब मुझ पर बहुत हंसे, आज ही मुझे कागज की नाव बनाने का बहुत शौक है। भाई ये शौक तो मुझे भी है कल्पना।
1: बिल्कुल सही। और हमारे अन्य श्रोता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चौधरी वास जिला हिसार हरियाणा से, राजू अग्रवाल, केशव दक्ष और विवेक प्रियांशी, वो सब हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उन्हें प्रोग्राम हमारा अच्छा भी लग रहा है। और उनसे ये भी कहना चाहूंगी, और हमारे जो अभी नए जो अन्य श्रोता जुड़े हैं उनको भी बताना चाहूंगी, हमारा जो प्रश्न है कि भाई आपको अपने बचपन की जो मासूम शरारत है वो हमें लिख भेजनी है, हमें ईमेल करनी है, हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।
0: तो जल्दी से लिख भेजिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपकी ईमेल्स का।

0: दोस्तों ये खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम नगर फिल्म से और जिसे गाया आशा भोसले और किशोर कुमार ने।
1: और कल्पना, जो प्रश्न हमने पूछा था बचपन की मासूम शरारत, ये हमारे पास ईमेल्स आने लग गई हैं। भास्विता हमारे साथ जुड़ गई हैं और वो कह रही हैं कि भाई उन्होंने क्या किया कि बचपन की शरारत जो

0: दोस्तों, ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, और फिल्म का नाम हाथी मेरे साथी।
1: और कल्पना, मेल्स लगातार हमारे पास आ रही हैं। आप हैं प्रकाश जी, वो कह रहे हैं कि प्रकाश गोगिया करकरडूमा दिल्ली से कह रहे हैं, हमारे समय में स्कूल में स्याही कलम और तख्ती का प्रयोग होता था और हम अपने आगे बैठे हुए छात्र मित्र पर की कमीज पर स्याही डाल देते थे और बड़े मासूम से बनकर चुपचाप वहां से तीन चार बच्चों के पीछे जाकर बैठ जाते थे। भाई प्रकाश जी, मैं समझ सकती हूँ आप बहुत शरारती रहे होंगे।
0: बिल्कुल। और नवीन कुमार भी जी ऐसे कुछ लिखते हैं कि बचपन में हम दोस्तों के साथ खाने पीने की छोटी सी दुकान लगाते थे, टॉफी बिस्कुट और नमकीन बेचते थे। ग्राहक आते तो सामान देने में बहुत खुशी होती थी, कमाई से ज्यादा मजा दुकान चलाने और दोस्तों के साथ बिताए उन सुनहरे पलों में आता था, पर इसमें शैतानी तो कोई थी ही नहीं।
1: उमेश कुमार ख्याला ऐसे कह रहे हैं कि बचपन में हम स्कूल से भागकर खेलने निकल जाते थे और जब स्कूल आते थे तो कुछ भी बहाना बना देते थे। भाई देखिए, ये तो शरारत सही नहीं है ना। स्कूल तो बच्चों जाना चाहिए, लेकिन ठीक है, ये भी करते हैं शरारत बच्चे, कम से कम खेलने के लिए की अच्छी बात है।
0: और ये देखिए, चरण दास जी ने भी ईमेल किया है कि बचपन के दिन याद करने से आधी बीमारी कम होती है। स्कूल में कपड़े का बैग लेकर जाते थे, उन्हें पूरी क्लास के बैग के साथ बांध देते थे, किसी की कमीज के साथ बांध देते थे, ऐसे ही हम शरारते करते थे। किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, लेकिन कई बार पहुंच भी जाता था।
1: अच्छा, और मधु किरण दिल्ली से कह रही है कि बरसात के दिनों में अपनी सहेलियों के साथ डेस्क पर बैठने वाली जगह पर कीचड़ लगा देती थी, अरे, और इस वजह से स्कूल में छुट्टी हो जाती थी, परंतु एक बार किसी ने देख लिया और हम चारों सहेलियों की खूब पिटाई हुई, और वो दिन आज भी याद आता है तो मन रोमांच से भर जाता है। भाई वाह मधु जी, मतलब आप भी काफी शरारती थी बचपन में। और एक और मेल आया है हमारे पास, सुशील पठानिया नादौर हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो कह रहे हैं अभिनंदन, और वो कहते हैं मैं बहुत शरारती था। एक बार मैंने मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छेद कर दिए और पत्थर को धीरे से तोड़कर बड़ा कर दिया और दादाजी से बहुत मार पड़ी, प्यार वाली मार पड़ी, क्योंकि छेद पड़े मिट्टी के घड़ों को किसी टूटे घड़े का छोटा टुकड़ा देकर सीमेंट के साथ जोड़कर ठीक हो जाते थे। भाई मार थोड़ी बहुत बच्चों को पड़ती रहती थी उस समय तो, है ना, और वो बड़े प्यार से प्यार भरी मार होती थी, उसमें ममता भी होती थी उस मार में।
0: बचपन में तो शरारते करो तो मार तो पड़ती ही थी, लेकिन वही जो मार है, वही जो अनुशासन जो बनता था, उससे ही हम आगे बढ़ते थे।
1: और महेश अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं नमस्कार, मुझे अपनी शरारत जो है वो बस ये याद आता है कि मैं फुटबॉल खेलता था और अक्सर मुझे चोट लग जाती थी, तो फुटबॉल खेलते हुए तो फिर ऐसे में पिताजी जब डॉक्टर के

0: से जाते थे तो वहाँ कहते थे कि बहुत शरारत करते हो. मुझे याद आता है डॉक्टर साहब बहुत अच्छा मुस्कुराते थे और मुस्कुरा मुस्कुरा कर बोलते थे. तो यानी कि उस शरारत में भी आपको शाबाशी ही मिल जाती थी, है ना, जब वॉलीबॉल खेलते थे, फुटबॉल खेलते
1: थे. बिल्कुल सही बात है. और आपने जब शाबाशी की बात की है तो एक जो शाबाशी की बात है वो हम भी करना चाहते हैं.
0: अच्छा,
1: आज बात करेंगे. कहते हैं कि सुई धागा जो है वो केवल कपड़ों को ही नहीं जोड़ते बल्कि संस्कृति और परंपराओं को भी पीढ़ी दर पीढ़ी रखते हैं. तो आइए आज हम बात करते हैं इसी कला के बलबूते अपनी पहचान बनाने वाली पद्मश्री 2026 तृप्ति मुखर्जी की.
0: भाई अभी इससे पहले तुमने बताया था कि पहनावा कैसे होना चाहिए और यहाँ पर पहनावे के सजावट की बात हो रही है. तो तृप्ति मुखर्जी जो हैं वो पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध कांथा कढ़ाई कलाकार हैं. उन्होंने 37 वर्षों से इस पारंपरिक लोक कला को संजोने और नई पहचान दिलाने का कार्य किया है. और हम तो कहेंगे उन्होंने जो देश विदेश तक इस कला को पहुँचाया है तो हजारों ग्रामीण महिलाओं को इसका प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का भी अवसर दिया है.
1: बिल्कुल. और उनके इस अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2026 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है. ये सम्मान केवल एक कलाकार का नहीं बल्कि भारत की समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा और महिला सशक्तिकरण का भी सम्मान है.
0: भाई कांथा की साड़ियां तो मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे पास भी है कांथा की साड़ियां. और इसकी जो कढ़ाई होती है ना कल्पना, वो बड़ी मनमोहक होती है, बहुत सुंदर लगती है. तो हम तो यही कहेंगे कि उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मंजिल के लिए आगे बढ़ना चाहिए.
1: बिल्कुल सही बात है. और इस पे मुझे एक शेर याद आ रहा है कि कदम चूम लेती है खुदा की मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे.
0: क्या बात है, वाह.

0: थोड़ी सी बेवफाई इस फिल्म से आप ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे आशा भोसले जी की आवाज में।
1: और एक और ईमेल आ गई है मांगेराम पारिक नुइया वाली सिरसा से, कह रहे हैं फरमाइश कर रहे हैं गीतों की, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हमारा जो विषय है आज का बचपन की मासूम शरारत उस पर कुछ दो लाइनें लिखकर जरूर हमें भेजें। और इसके साथ एक और मेल है अमीन खान, वो कह रहे हैं सोरोनी सेक्टर 5 से, कह रहे हैं कि बारिश के मौसम में कागज की नाव बनाकर पानी में चलाना बहुत अच्छा लगता था, बरसते पानी में उछल उछल कर मैं नहाता था। तो भाई नावों का मौसम आ गया है ना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए एक ईमेल और आ गया हमारे पास गौरी शंकर वर्मा जी का, और वो लिखते हैं कि 1969 की बात है, हम चार दोस्त अमरूद के बाग में जाते थे, माली के लड़के को 10 पैसे दे दिया करते थे, माली बाग में आता जब वह सीटी बजा दिया करता था हम भाग जाते थे। अच्छा। एक दिन माली ने सोचा कि मैं जब आता हूँ तो मेरा लड़का सीटी क्यों बजाता है। एक दिन माली ने एक दोस्त को पकड़ लिया और फिर सब इकट्ठे हो गए, और जब वह बाग हमारे पड़ोसी का ही था और फिर जब हम भागे तो हमें उस माली ने पकड़ा और पकड़ के हमारी धुनाई कर दी।
1: और यहाँ पर मैं एक और जरा जो सावधानी है वो बताने जा रही हूँ। डॉक्टर जो राजेश राव है वो हमारे साथ जुड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि आज गुरु दत्तात्रेय जयंती है और हम आज के दिन ये मनाते हैं, और ये कहते हैं कि एक दूसरे की जो सेफ्टी का हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम चल रहे होते हैं, खाली जगहें होती हैं, खाली गलियां होती हैं और ध्यान नहीं देते, तो बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान दें और बहुत ध्यान से चलें, फुटपाथ पर चलते हुए ध्यान दें, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होता है तो उसमें भी ऐसा ना हो आपका कहीं पांव पड़ जाए। तो बारिश में ये भी सावधानी की जरूरत है। तो ये सारी शरारतों के बीच हम कह रहे हैं ये भी ध्यान रखना जरूरी है। कल्पना
0: शरारतें तो करें ही लेकिन सावधानियां भी रखें थोड़ी सी। और आपने एक ऐसी बात की, इसके बाद मैं एक मजेदार बात बताती हूँ। एक ईमेल और आया है, धर्मेंद्र मिश्रा जी लिखते हैं कि एक बार मेरे घर सत्यनारायण जी की कथा हो रही थी, मेरे घर फूफा जी आए हुए थे, कथा के बाद प्रसाद पाया पंजीरी वाला, फूफा के सामने फूफा बोलकर पंजीरी उड़ा दी, फिर मम्मी ने दो चुका दिए।
1: भाई ये तो होना ही था, फूफा। ओहो मैं समझ गई। अच्छा तो ऐसी ही एक मेल हमारे पास रोहिणी से सोनाली लिखती हैं कि जब मेरा बेटा 2 साल का था तो एक दिन बड़ी देर तक उसकी कोई आवाज नहीं आई तो चिंता की विषय हो गया, उन्हें तनाव हो गया क्योंकि वो बड़ा शरारती था। पूरे घर में उसे ढूंढने के बाद आखिर में वो मिला कहाँ पता है? रसोई घर में आलू प्याज के ढेर के बीच में बैठा हुआ था। सब तरफ आलू प्याज बिखरे हुए थे और वो उनके साथ खेलता हुआ बड़ा प्यारा लग रहा था, और फिर टोकरी उठाकर सब्जी वाले की नकल करने लगा। ऐसे में तो मैं उसे क्या ही डांटती, मैं लाड से हंस पड़ी। भाई वाह,
0: बिल्कुल सही बात है, मम्मियां तो बच्चों की शरारतों पे मुस्कुराती ही हैं।
1: जी वारी वारी जाती हैं।
0: बिल्कुल। और हमारे और श्रोता जैसे सिमरन मुखी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, तो ऐसे ही हमारे जो अन्य श्रोता हैं वो भी हमसे जुड़े रहे और हमें ईमेल करते रहे, अपनी शरारतें बताते रहे fmgold@gmail.com पर।
1: जी
0: और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग की।
1: यदि आपको काफी देर से हम लोग बोल रहे हैं तो हम बताएं।
0: बिल्कुल, जानकारी भी तो देनी है अपने दोस्तों को, तो पब्लिक स्पीकिंग की बात करेंगे। और हमारे बहुत से दोस्त हैं जो मंच पर जाते हैं लेकिन मंच पर जाने से पहले घबराहट होती है, तो ये बिल्कुल सामान्य बात है। लगभग हर अच्छे वक्ता ने कभी न कभी स्टेज फियर का सामना किया है। आज हम बात करेंगे इसी को कम करने के कुछ असरदार उपायों।
1: जी बिल्कुल, तनाव में ना रहें, पूरी तैयारी करें, अपने विषय को अच्छी तरह से समझ लें, शुरुआत और अंत की पंक्तियां याद रखें ताकि आत्मविश्वास बना रहे, बार बार उसका अभ्यास करें। पहले ऐसा करें कि आईने के सामने खड़े हो जाएं और फिर अपनी आवाज में रिकॉर्ड करें और सुने। हम रेडियो वाले ये करते हैं ना, कितनी बार है ना कि अपनी आवाज को रिकॉर्ड करते हैं, फिर खुद ही सुनते हैं, खुद ही डायरेक्टर होते हैं और खुद ही एक्टर होते हैं, और उसके बाद परिवार और दोस्तों के सामने बोलने का अभ्यास करें।
0: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप मंच पर जा रहे हैं तो उससे पहले अगर आपको घबराहट हो रही है तो आपको 4-5 बार गहरी सांस लेकर उसे धीरे धीरे छोड़ना है, इससे घबराहट कम होती है। और आपको धीरे धीरे बोलना है, स्पष्ट बोलना है, बहुत तेज यानी स्पीड में बोलने की कोशिश नहीं करनी है। यदि 1-2 सेकंड का विराम भी लेना पड़े तो बिल्कुल सामान्य है। श्रोताओं को अपना साथी समझें, ये ना सोचें कि लोग आपकी गलती ढूंढेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग आपको सुनने आए हैं, आपकी परीक्षा लेने कोई नहीं आता।
1: जी और छोटी शुरुआत करें, पहले छोटे छोटे समूह में बोलने का अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि बड़े मंच पर जाने का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और याद रखें गलती से बिल्कुल डरना नहीं है, अगर कोई शब्द छूट जाए या थोड़ा रुक जाए तो मुस्कुराएं और आगे बढ़ जाएं। और अधिकांश श्रोता ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, पर एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कल्पना, कि आत्मविश्वास को लेकर कोई मंच पर नहीं जाता, बल्कि मंच पर बार बार जाने से आत्मविश्वास आता है।
0: क्या बात
1: जी।

0: और जब आप आत्मविश्वास से कुछ बोलेंगे ना तो देखना पूरी दुनिया को आपकी बातें अच्छी लगने लगेंगी, है ना।
1: और आपने अच्छी बातों की बात की है तो अब हम दोस्तों को एक अच्छा सा गीत भी सुना देते हैं।
0: जी

0: दोस्तों, ये खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे धरती कहे पुकार के फिल्म से आवाज लता मंगेशकर की।
1: और कल्पना, एक और मेल मेरे पास आई है। सुरभि हमारे साथ जुड़ गई हैं मयूर विहार से। वो कह रही हैं कि एक बार घर में मेहमान आने वाले थे और माँ ने बड़े प्यार से मिठाइयाँ बनाकर डिब्बे में रख दी और सख्त हिदायत दी कोई मिठाई नहीं खाएगा। लेकिन भाई मिठाई की खुशबू से सब्र कहाँ होता, तो मैं और मेरा भाई हम चुपके से उठे, हमने रसोई में पहुंचे और मिठाई खा ली और फिर लगा कि डर गए कि कम दिखेगी तो पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, डिब्बे में रूई भर दी और ऊपर से मिठाइयाँ सजा दी। जब मेहमानों के सामने डब्बा खुला तो मेहमानों मिठाइयों के नीचे रूई देखकर सब हैरान रह गए। माँ ने हमें देखा और हमारी झुकी हुई नजरों ने सारी कहानी बता दी। पहले तो माँ नाराज, फिर हमारी मासूम हरकत पर खुद ही हंस पड़ी। भाई वाह। और एक और मेरे पास संदेश आ गया है, आप हैं गुड़गांव से जितेंद्र। वो कह रहे हैं कि पापा की बड़ी बड़ी चप्पल पहनकर पूरे घर में घूमना किसी रोमांच से कम नहीं होता था। दो कदम चलते थे, फिर तीन बार फिसलते थे, खुद को बहुत बड़ा समझते थे। घर वाले हमें देखकर हंसते थे, हम पूरे रौब से कहते देखो मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ। कहते हैं ना कि अगर पिता की चप्पल पुत्र के पैर में आने लगे तो वो बड़ा हो जाता, तो ऐसा ही कुछ जितेंद्र जी कहना चाह रहे हैं ना।
0: बिल्कुल सही बात है। और इसी बात को आगे बढ़ाती हूँ कि वे कहते हैं कि इंसान की पहचान सिर्फ उसके शब्दों से नहीं बल्कि उन्हें कहने के तरीके से भी होती है। जिंदगी में कुछ ऐसे पल भी आते हैं जब हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन ऊंची आवाज में बोलने से बात बनने के बजाय बिगड़ सकती है।
1: जैसे हम सब जब परिवार की बात करते हैं तो भाई प्यार और सम्मान ही तो रिश्तों की नींव होती है। भाई एक पल का गुस्सा और कठोर बातें वर्षों का अपनापन भी आहत कर देती हैं। बच्चों की मासूमियत और बुजुर्गों का आत्मविश्वास खत्म हो सकता है। इसलिए अपनी बात को ना कल्पना हमेशा शांति से समझाना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। और कई बार हम जैसे

0: कि लोग डॉक्टर्स पर भी गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, तो उनसे बस ये कहना है कि भाई उससे कुछ बदलता नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर्स तो अपना काम कर रहे होते हैं, बल्कि आप उन पर गुस्से में चिल्लाकर अपनी परेशानी बढ़ा लेते हैं। अस्पताल में भी धैर्य और संवेदनशीलता की बेहद जरूरत होती है, तो वही बनाए रखें।
1: और सिर्फ अस्पताल में ही नहीं, यदि आप कभी इस प्रकार का मौका पड़ जाए कि पुलिस से कभी बात करनी पड़े, सामना हो जाए, भी ट्रैफिक में आप कभी हो सकता है रेड लाइट क्रॉस कर जाए, तो पुलिस के सामने भी शांत रहकर अपनी बात रखें, वो ही ज्यादा प्रभावकारी होता है, क्योंकि वो भी हमारी भलाई के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोगों को ना कल्पना सड़क पर बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है, और फिर कई बार बहुत अनचाही घटनाओं की वजह भी वो सब बन सकता है, तो इसमें क्या होता है, नुकसान अपना ही होता है ना।
0: बिल्कुल सही है, इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए तो अपनी आवाज नहीं अपने धैर्य को ऊंचा रखिए, क्योंकि संयम से लिया गया एक सही निर्णय कई परेशानियों को आने से पहले ही रोक देता है।
1: तो याद रखिए, ऊंची आवाज नहीं बल्कि ऊंचे विचार और व्यवहार आपको बेहतर पहचान दिलाते हैं, है ना।

0: दोस्तों ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं गोरा और काला फिल्म से लता और मुकेश की आवाज में। और देखिए हमारे एक श्रोता ने हमें ईमेल किया है और उन्होंने लिखा है कि नमस्कार जी, एफएम गोल्ड पर घर आंगन जैसा बेहतरीन कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए गोल्ड के अधिकारियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं एफएम गोल्ड के समस्त पुराने श्रोता सत्य प्रकाश गोयल, भगवती सोलंकी, अनीता वर्मा, स्वामी अनिल त्यागी, प्रकाश गोगिया, मनोहर लाल गांधी, किशन वंजानी दिल्ली, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल एफएम गोल्ड के साथ। और चलिए अब आगे बात करते हैं, एक बहुत अच्छी और रोचक जानकारी आपसे साझा करना चाहती हूँ कि भाई जरा कल्पना कीजिए एक ऐसा स्कूल जहाँ न कोई फीस हो, न कोई बड़ी इमारत, न ब्लैक बोर्ड, न बेंच, न डेस्क, और सबसे दिलचस्प बात जहाँ कक्षा नदी के बीच लगती हो। तुमका थोड़ा अजीब लगा ना?
1: जी मुझे लग रहा है कि बरसात की बात हो रही है तो तुम कुछ ऐसी जगह ले जा रहे हो जहाँ पे भाई नदी, यानी बरसातों में तो नदियों में पानी बढ़ जाता है ना, तो तुम किसी कौशल की बात करने जा रही हो नदी में, मतलब मैं नहीं बोलूंगी तुम ही बोलो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे जिक्र तो कर रही थी, आपको याद है तो आप बताओ ना, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको।
1: भाई ये कहानी नहीं है बल्कि हमारे देश की

0: अनोखा स्विमिंग स्कूल चलाया जा रहा है। यहाँ बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी को निःशुल्क तैराकी सिखाई जाती है। इस स्कूल की कक्षा किसी कमरे में नहीं बल्कि नदी के पानी में लगती है।
1: वाह वाह वाह। और इस पहल की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि केरल में मॉनसून के दौरान बाढ़ और जलभराव की स्थिति अक्सर बन जाती है। ये तो कहीं पे भी बन जाती है
0: जी, जी।
1: ऐसे समय में तैरना केवल एक खेल नहीं बल्कि जीवन बचाने वाला कौशल बन जाता है। स्थानीय स्वयं सेवकों ने मिलकर लोगों को तैराकी और जल सुरक्षा का प्रशिक्षण देना शुरू किया ताकि कोई भी व्यक्ति पानी से जुड़ी दुर्घटनाओं का शिकार न बने।
0: और इस अनोखी पहल की सराहना जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने कार्यक्रम मन की बात में की थी। उन्होंने कहा कि सीखने के लिए हमेशा बड़ी इमारतों की नहीं बल्कि बड़े इरादों की जरूरत होती है। तो हम अपने सुनने वालों को बता दें कि ये पहल हमें सिखाती है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती बल्कि जीवन में कुछ ऐसे हुनर भी होते हैं जो सही समय पर किसी का जीवन भी बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो आइए हम भी अपने बच्चों को तैराकी जैसे जीवन रक्षक कौशल सीखने के लिए प्रेरित करें और समाज में ऐसे सकारात्मक पहलों का समर्थन करें।
0: हाँ, और बरसात में अगर नदी के किनारे जाएं तो थोड़ा सावधान ओके जाए, है ना?
1: बिल्कुल।
2: नदी नारे

0: दोस्तों मुझे जीनो एफएम से ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं आशा भोसले की आवाज में, और इसी के साथ घर आंगन कार्यक्रम से मुझे यानी अपने रेडियो से की कल्पना
1: और रश्मि कुकृति को दीजिए विदा।
0: नमस्कार।

Kevin. आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया।

0: गया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल शोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी दिन में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भाग, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त देखी गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1:10:15 हुए हैं और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। कार्यक्रम को लेकर हाजिर है आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम जिस फिल्म को लेकर आपके लिए लेकर आए हैं वो सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की एक यादगार धरोहर है। ज्यादा देर न करते हुए आइए सुनते हैं इस खूबसूरत फिल्म के सदाबहार गीत से शुरुआत करते हैं और यकीन मानिए गीत सुनकर आप समझ जाएंगे कि हमारी आज की फिल्म कौन सी है। तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

इस खूबसूरत और दिल में उतर जाने वाले गीत को लता जी की आवाज में सुनकर आप जान ही गए होंगे कि हमारी आज की फिल्म है राम तेरी गंगा मैली, वो फिल्म जिसने प्रेम की पवित्रता, समाज की सच्चाइयां और इंसानी रिश्तों की जटिलताओं को बड़े ही संवेदनशील ढंग से पर्दे पर उतारा। राज कपूर का ये ड्रीम प्रोजेक्ट थी और वो गंगा नदी की निर्मलता और समाज में फैले प्रदूषण के बीच एक गहरा प्रतीकात्मक संबंध दिखाना चाहते थे और इसी सोच में उन्होंने फिल्म का जन्म हुआ राम तेरी गंगा मैली का। क्या आपने गौर किया है कि इस फिल्म की कहानी जितनी सरल दिखाई देती है उतनी ही गहरी भी है। पहाड़ों की मासूम गंगा और शहर का युवक नरेंद्र, दोनों का प्रेम और फिर बिछड़ना, संघर्ष और समाज की कठोर सच्चाई से सामना। फिल्म में गंगा का किरदार निभाया था मंदाकिनी ने। ये उनकी पहली फिल्म थी और पहली फिल्म से उन्हें रातों रात स्टार बना दिया गया। वहीं नरेंद्र के किरदार में थे राजीव कपूर, जो राज कपूर के सबसे छोटे बेटे थे।

आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हमारी आज की फिल्म है राम तेरी गंगा मैली और आपके साथ जुड़ी हूँ मैं यानी अर्चना गोयल।

0: अभी गान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है जानकारी

आपको बता दें कि राज कपूर को शोमैन कहा गया क्योंकि उनकी फिल्में समाज से जुड़ी होती थीं। इस फिल्म के बारे में उनके पुत्र रणधीर कपूर का कहना है कि वो अपने पिताजी के साथ दिल्ली एक शादी में गए। वहां उन्होंने रविंद्र जैन को राधा कृष्ण के भक्ति गीत गाते सुना, जिसे सुनकर उन्होंने बार बार उनसे गाने की गुहार लगाई और अपने घर आने का निमंत्रण दिया और अपने परिवार को भी वो गीत सुनाए। बाद में दोनों में दोस्ती हो गई और वो राज कपूर के फार्म हाउस में छुट्टियां मनाने गए। वापस आने पर राज कपूर बेहद खुश थे क्योंकि उन्होंने अपनी अगली फिल्म के संगीतकार को चुन लिया था और रविंद्र जैन ने संगीत में ऐसी जान डाली कि लोगों के हृदय पर इसका इतना असर हुआ कि वो आज 41 साल के बाद भी ये गीत आज भी उतने ही ताज़ा और सबको पसंद आते हैं।

शूटिंग का बड़ा हिस्सा उत्तराखंड में हर्षिल और गंगोत्री में शूट हुआ। बर्फ से ढके पहाड़, बहती नदियां और प्राकृतिक सौंदर्य फिल्म की पहचान बन गए। कहते हैं कि आज भी मंदाकिनी के नाम से एक झरना है जिसमें मंदाकिनी पर झरने में एक गीत फिल्माया गया था। एक रोचक बात यह भी है कि फिल्म अपने कुछ बोल्ड दृश्यों को लेकर काफी विवादों में रही, लेकिन राज कपूर का कहना था कि उनका उद्देश्य कभी भी सनसनी फैलाना नहीं था, बल्कि गंगा की निष्कलंक पवित्रता को प्रतीक रूप में दिखाना था। काफी विवादों के बाद भी फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और फिल्म सुपर डुपर हिट रही। आपको बता दें कि राम तेरी गंगा मैली फिल्म ने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, साथ ही राज कपूर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब मिला। रविंद्र जैन ने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का सम्मान प्राप्त किया और सुरेश सावंत सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन और राज कपूर सर्वश्रेष्ठ संपादन पुरस्कार प्राप्त करने वाले बने। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर के तौर पर 9.5 करोड़ का कलेक्शन प्राप्त किया।

तो दोस्तों अब बात करते हैं, हमारे बहुत से श्रोताओं के मेल हमें मिल रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बिरमगांव गुजरात से अजीत भावसार और प्रमिला भावसार। आप हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और उनकी पत्नी संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, पार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से, पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी और असद अंसारी। आप हैं शांति नगर सोनीपत से सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी और आप हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अभिराज सिंह। हमारे साथ जुड़े हैं सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, गांधीनगर गुजरात से और इन सभी को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम को बहुत शिद्दत से सुन रहे हैं।

राज कपूर ने इस फिल्म के माध्यम से ये संदेश दिया कि इंसान का मन साफ होना चाहिए, गंगा चाहे कितनी भी मैली क्यों न दिखाई दे, उनकी मूल पवित्रता कभी भी समाप्त नहीं होती। यही संदेश फिल्म के शीर्षक में भी छिपा है। दोस्तों, जब भी भारतीय से फिल्मों की, क्लासिक फिल्मों की चर्चा होगी तो राम तेरी गंगा मैली का नाम सम्मान से लिया जाएगा। ये फिल्म प्रेम की कहानी है, संघर्ष की कहानी है और सबसे बढ़कर इंसानियत की कहानी है। राज कपूर ने अपने शानदार करियर का यादगार अध्याय इसी फिल्म के साथ लिखा।

उम्मीद है आज का ये सफर आपको पसंद आया होगा। मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल आपसे विदा लेती हूँ। 3 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहले बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने सांझे तौर से परिवर्तनशील तब्दीली का स्वागत किया है। खेतरी स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा ते तकनीकी नवीनता लिए व्यापक ढांचे को अंतम रूप दिता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में पंजाब समेत सरहदी जिलों के पुलिस सुप्रिटेंडेंट की एक कॉन्फ्रेंस की प्रधानगी करेंगे। सरकार ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से आधारित हलों के लिए एक आलमी केंद्र वजो कायम करने की अपनी वचनबद्धता दोहराई है। भारत की ब्रिक्स 2026 प्रधानगी हेठ ट्रांसपोर्ट मंत्रियों की तीजी ब्रिक्स मीटिंग के मौके पर अज नागपुर में ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में नौवीं तो बारहवीं जमात में पढ़ रहे अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के विद्यार्थियों लिए स्कूल फीसां की पूरी माफी को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने विक्टोरिया के सर्कल हाउस विखे तीजे भारत आस्ट्रेलिया सालाना सम्मेलन की समाप्ति तो बाद एक साझा बयान जारी किया। दोवां नेताओं ने दिवाले संबंधों में परिवर्तनशील तब्दीली का स्वागत किया और खेतरी स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा से तकनीकी नवीनता लिए व्यापक ढांचे को अंतम रूप दिता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आस्ट्रेलिया भाईवाली भविख लिए बनाई गई एक मजबूत और स्थायी भाईवाली है। मीडिया को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि दोवां देशों विचकार संबंध डूंघे आपसी विश्वास से आधारित एक नवे और व्यापक पड़ाव में दाखिल हो गए हैं।
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।

0: मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में मजीद वसत पैदा हो रही है, जो गहरे बाहमी एतमाद पर मबनी है। इस समिट की एक अहम खसूसियत इक्तिसादी और तिजारती इश्तराक को रफ्तार देना है।
0: कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है।
1: वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे में एक अहम इकदाम के तहत भारत को ऑस्ट्रेलिया की जानिब से यूरेनियम की सप्लाई को यकीनी बनाने के सिलसिले में एक अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारत के माहौल के लिए साजगार मकासद को एक नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि साइबर अहम टेक्नोलॉजियों और सप्लाई चेन से मुतालिक ऑस्ट्रेलिया भारत शराकत दारी और अहम मादनियात से मुतालिक एक मखसूस कॉरिडोर के आगाज के साथ ही अहम टेक्नोलॉजी और वसाइल के तहफ्फुज़ को भी नई बुलंदी हासिल हुई है।
0: आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज सुबह दिल्ली में तेज बारिश हुई, जिसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने की खबरें आईं, जिससे ट्रैफिक मुतासिर हुआ। भारतीय मौसमियात महकमे ने हरियाणा समेत कौमी राजधानी में औसत से शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड, अवामी कामकाज के महकमे और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीमें पानी जमा होने की सूरत हाल से निमटने के लिए सरगर्म हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने आज भुवनेश्वर में उड़ीसा की जरई और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भारत के गहरे समुद्र में माहीगीरी के वसाइल के पायदार इस्तेमाल की खातिर एक तारीखी कौमी पहल का आगाज किया। बहरी मईशत को कौमी खुशहाली के मामले में एक यकसर तब्दीली वाला इंजन करार देते हुए उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि विकसित भारत के हुसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी माहीगीरी और बहरी पेशावराना खिदमात को इख्तियार करें। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: हुकूमत ने आज गहरे समंदर में माहीगीरी के वसाइल के पायदार इस्तेमाल की खातिर एक तारीखी कौमी पहल का आगाज करके बहरी शोबे की तरक्की में अहम संगे मील हासिल कर लिया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने दूर दराज समंदर में काम करने वाले माहीगीरी के भारतीय परचम बरदार बहरी जहाजों के लिए इजाजत नामों के कौमी सतह पर नफाज का इफ्तिताह किया। उन्होंने एक इंतहाई अहम डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज भी जारी की। उन्होंने नौजवान भारतीयों से अपील की कि वो माही परवरी को जदीद साइंस पर मबनी पेशे के तौर पर अपनाएं, जहां आलमी सतह पर रोजगार के मौके मौजूद हैं। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनन हैदर।
1: उत्तराखंड कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और ULLAS माशरे में ताहयात सीखने की तफहीम यानी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत बालिगों की खानदगी के मुकर मेयारात को पूरा करने के बाद मुल्क की छठी मुकम्मल तौर पर खानदा रियासत बन गई है। हुकूमत हिंद की वजारत तालीम की स्कूली तालीम और खानदगी के महकमे की तरफ से तय करदा खानदगी के मेयारात को पूरा करने के बाद गवर्नर की जानिब से 8 जुलाई 2026 को इस ऐलान की मंजूरी दी गई। हुकूमत ने जरात में मशीनों के इस्तेमाल से मुतालिक जेली मिशन के तहत मुल्क भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मालियत की तकरीबन 22 लाख जरई मशीनें फराहम करने की हिमायत की है। ये मिशन जरात में मशीनों के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए साल 2014-15 में शुरू किया गया था, जो मुल्क में जरई पैदावारियत को बढ़ाने के सिलसिले में इंतहाई अहम रोल अदा करती हैं। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP को उसके योम तासीस के मौके पर तमाम तलबा को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि मुल्क मुकद्दम जज्बे के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुज़िश्ता कई दहाइयों से मुल्क की खिदमत, रहनुमाई और समाजी जिम्मेदारियों की तरफ रागिब करती आ रही है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि इस तंजीम ने

0: like India and Australia.
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी. हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे. फ्रेंड, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की.
0: Addressing the media, the Prime Minister highlighted that the relationship has entered an expansive era anchored in deep mutual trust. A major highlight of the summit was the significant momentum given to economic and trade integration.
1: Comprehensive Economic Cooperation Agreement यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए balance, ambitious और win-win होगा. हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे. हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है.
0: Prime Minister Modi said India and Australia have taken a major step forward in the field of nuclear energy by signing a significant agreement that will enable the supply of uranium from Australia to India. He said the agreement will give fresh momentum to India's clean energy goals. He said strategic technology and resource security also reached new heights with the operationalization of the Australia-India Partnership on Cyber, Critical Technologies and Supply Chains, AI Pacts. And a dedicated critical minerals corridor.
1: आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है. इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी. क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है.
0: Mr. Albanese emphasized that the ultimate heart of this future-ready partnership remains the vibrant Indian diaspora bridging both nations. More from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
2: This landmark summit signals a historic step change as New Delhi and Canberra systematically lock in a future-proof architecture for the Indo-Pacific by transitioning from traditional trade to critical high-tech defense corridors, fast-tracking the ambitious SECA and unleashing long-term uranium exports under a historic nuclear arrangement. Both nations have elevated mutual trust to an unprecedented scale, while Prime Minister Albanese correctly identified

0: Thai and dedicated critical minerals corridor, Australia and India partnership on cyber critical technologies and supply chains becomes operational. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne, says bilateral relationship entered an expansive era anchored in deep mutual trust. Vice President C.P. Radhakrishnan unveils national mission for sustainable use of high seas fishery resources in Bhubaneswar. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित 30वें भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
2: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
3: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन टी ट्वेंटी जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
2: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
3: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
3: हमने सीका पर तेजी

0: काम करने का निर्णय लिया है जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
1: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
0: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: And critical minerals.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को

0: आधारित पैसे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
1: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. And this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
0: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
2: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है।

0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलांग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि यह सेंटर पूरे भारत के हिमालयी क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था। रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
1: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले एनसीआर दिल्ली की बात करें, तो एनसीआर दिल्ली के लिए आज के लिए हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए हमारा आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक

मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्स, 684 किलोहर्ट्स, FM 100.1 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेश खदमत है एनसीआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी जोहार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
1: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लवण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
1: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
1: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं। और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी, उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबुएलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
1: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
2: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं, ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
1: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
2: बिल्कुल।
1: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
2: जी।
1: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
2: जी जी जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है।

0: ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
1: माना जाता है श्रोताओं की इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
0: जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
1: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
0: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
1: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
0: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
1: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वाले सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: आज का प्रश्न है, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
0: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

0: भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना यह सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से रहते थे।

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था।

0: वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है।
1: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटके तोड़ दिए। हाँ
0: अरे धृताची।
2: हाँ भैया।
0: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दे।
2: अच्छा।
0: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो, अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
3: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
4: अरे, अरे मगर... भाई ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? अब तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
3: जी,
4: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
3: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियां टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़इयों और लोहारों के घर गया है, उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
4: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
3: जी पिताजी।
4: उसमें रखकर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
3: ठीक है।
4: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है, कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
3: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
4: अरे प्रवाहन।
1: जी पिताजी।
4: तो मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
1: वो पिताजी,
4: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है, कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
1: जी वो
4: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
1: पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
0: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
3: हाँ हाँ पिताजी।
1: और पिताजी हम तो अपने साथ हरिराज शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
0: हाँ।
1: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे, खेत बस तैयारी समझिए।
4: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रुमर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
1: जी
4: उन्हें कल हस्तिनापुर जाना है।
0: पर क्यों पिताजी?
4: वहाँ महाराजा हरिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी, वहाँ रथों की दौड़ भी होगी।
0: पिताजी हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
1: जी पिताजी,
0: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
4: बहुत अच्छा।
0: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
1: पिताजी देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
0: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
4: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं जौ और चावल ले जाना।
0: जी पिताजी।
4: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
0: अच्छा पिताजी।
4: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं, यही नहीं गुरुकुलों के ब्रह्मचारी गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
1: अच्छा पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
2: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
4: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
2: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना, सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
1: चल चल बढ़िया है कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने।
5: और क्या,
1: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
2: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
1: अच्छा अच्छा चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
4: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
1: जी पिताजी।
4: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
1: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पहने तीर भी रख लिए हैं। भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे?
0: और पिताजी एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
1: भैया सुना है इस...

0: बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेह से भी रथ आ रहे हैं।
1: हाँ
0: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
2: हाँ ये तो है।
1: हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
3: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
1: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
0: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
1: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
0: चलो देखते क्या होता है।
2: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
3: अरे वो देखो वो देखो,
0: क्या
3: रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो रेस शुरू हो गई।
0: अरे क्या बाकी और सजीले सवार है। वाह वाह
3: वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ।
4: वो पहुंच गया।
5: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे।

0: गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा, धन्यवाद।
1: मित्र, कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र? मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्ण

0: आदाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
1: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
0: अच्छा,
1: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
2: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
3: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।
2: हाँ, चलो चलो।
3: अरे ये देखो कितना अच्छा घोड़ा।
1: वाह,
3: हाँ,
1: इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
3: इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसे पकड़ लेते हैं।
1: चलो चलो।
3: अरे वाह, अरे अरे, चलो इसे पकड़ लेते हैं।
4: ये पकड़ा।
0: अरे ये कोलाहल कैसा है?
5: छोड़ दो, छोड़ दो। ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो, छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
0: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे, इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
2: अरे चलो चलो, भाग चले, आचार्य को बता दें, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
0: अरे रुको तो सही। अरे देखो देखो,
2: क्या
0: आचार्य तो वहीं पहुंच गए हैं। और हाँ, वो देखो, आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
2: हाँ। अच्छा हुआ, संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
0: हाँ।
2: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
0: हाँ।
2: उनका प्रभाव, कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
6: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल, और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

एंथनी अल्बानीज ने आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत सालाना सरबराह मुलाकात में शिरकत की, जिसके तहत वफ्द की सतह की बातचीत की गई। दोनों वुजराए आजम ने समिट के अख्तिताम पर विक्टोरिया में गवर्नमेंट हाउस में मुश्तरका प्रेस बयान जारी किए। दोनों लीडरों ने दो तरफा ताल्लुकात में यकसर तब्दीली को एक अहम कदम करार देते हुए उसकी सताइश की। भारत बैरुल काहिल में अमनो इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए दोनों रहनुमाओं ने दिफा और सिक्योरिटी इश्तराक के सिलसिले में एक मुश्तरका ऐलामिये पर दस्तखत किए। भारत और ऑस्ट्रेलिया को दरख्शां जमहूरियतें और अहम समंदरी कुव्वतें करार देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बैरुल काहिल सिर्फ दो समंदरों का संगम नहीं, बल्कि इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी एक जहन वाली जमहूरियतों की मुश्तरका उमंगों की अक्कासी होती है। मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में मजीद वसअत पैदा हो रही है, जो गहरे बाहमी एतमाद पर मबनी है। इस समिट की एक अहम खसूसियत इक्तिसादी और तिजारती इश्तराक को रफ्तार देना है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे में एक अहम इकदाम के तहत भारत को ऑस्ट्रेलिया की जानिब से यूरेनियम की सप्लाई को यकीनी बनाने के सिलसिले में एक अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारत के माहौल के लिए साजगार मकासद को एक नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि साइबर, अहम टेक्नोलॉजियों और सप्लाई चेन से मुतालिक ऑस्ट्रेलिया भारत शराकत दारी और अहम मादनियात से मुतालिक एक मखसूस कॉरिडोर के आगाज के साथ ही अहम टेक्नोलॉजी और वसाइल के तहफ्फुज़ को भी नई बुलंदी हासिल हुई है। हुकूमत ने भारत को मसनूई जहानत के इस्तेमाल और AI पर मबनी तौर तरीकों के सिलसिले में आलमी मरकज बनाने के अहद का इरादा किया है। आज नई दिल्ली में भारतीय सनत के ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स GCC के कन्फेडरेशन की कारोबारी समिट 2026 से के इफ्तिताही इजलास में इजहार ख्याल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत के सेक्रेटरी एस कृष्णन ने बताया कि हुकूमत इब्तदा से ही मसनूई जहानत के तई मुस्बत और पुरुमीदी का नजरिया रखती है। उन्होंने कहा कि AI के इस्तेमाल पर खास तवज्जो दी जा रही है, ताकि मुख्तलिफ शोबों में पैदावारियत और कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाया जाए। हुकूमत ने जरात में मशीनों के इस्तेमाल से मुतालिक जेली मिशन के तहत मुल्क भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मालियत की तकरीबन 22 लाख जरई मशीनें फराहम करने की हिमायत की है। ये मिशन जरात में मशीनों के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए साल 2014-15 में शुरू किया गया था, जो मुल्क में जरई पैदावार को बढ़ाने के सिलसिले में इंतहाई अहम रोल अदा करती हैं। इस मिशन में इस पर खसूसी जोर दिया गया है कि कम सहूलियात याफ्ता और शिमाल मशरिकी रियासतों में जरात में मशीनों और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में इलाकाई सतह पर फर्क को खत्म किया जाए। आज सुबह दिल्ली में तेज बारिश हुई, जिसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने की खबरें आईं, जिससे ट्रैफिक मुतासिर हुआ। भारतीय मौसमियात महकमे ने हरियाणा समेत कौमी राजधानी में औसत से शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड, अवामी कामकाज के महकमे और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीमें पानी जमा होने की सूरत हाल से

0: शक्तिशाली के मामले में एक यकसर तब्दीली वाला इंजन करार देते हुए उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो विकसित भारत के हुसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी माहिगीरी और बहरी पेशावराना खिदमात को इख्तियार करें। हुकूमत ने आज गहरे समंदर में माहिगीरी के वसाइल के पायदार इस्तेमाल की खातिर एक तारीखी कौमी पहल का आगाज करके बहरी शोबे की तरक्की में अहम संगे मील हासिल कर लिया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने दूर दराज समंदर में काम करने वाली माहिगीरी के भारतीय परचमबरदार बहरी जहाजों के लिए इजाजत नामों के कौमी सतह पर नफाज का इफ्तिताह किया। उन्होंने एक इंतहाई अहम डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज भी जारी की ताकि रियासत में गहरे समंदर में माहीगीरी के इकोसिस्टम को मजबूत बनाया जा सके और बहरी मईशत को वसी किया जा सके। उन्होंने कहा कि एक मुतहरिक बहरी मईशत 2047 तक विकसित भारत का कलीदी मुहर्रिक होगी। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट सेक्शन पर मरम्मत के काम का जायजा लिया। इस सेक्शन पर रेलवे लाइन और नवाही इलाकों में जमीनी तोदे खिसकने के सबब बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। मरकजी और मगरबी रेलवे की टीमें मरबूत तरीके से काम कर रही हैं। जनाब वैष्णव ने बताया कि एक रेलवे लाइन को बहाल कर दिया गया है और महकमे ने इस लाइन पर तमाम ट्रेनों को दो इंजनों के साथ चलाने का फैसला किया है। भारत की ब्रिक्स 2026 की जेर सदारत तीसरी ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वजरा की मीटिंग के मौके पर आज नागपुर में ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आगाज हो गया है। वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के बाद मीडिया के अफराद से बात करते हुए ट्रांसपोर्ट के मरकजी सेक्रेटरी वी उमाशंकर ने कहा कि सीनियर अहदेदारान ने मोबिलिटी, शहरी बुनियादी ढांचे, पायदार तरक्की जैसे अहम मामलों पर तबादले ख्याल किया। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी दस्तों ने कल कठुआ जिले में दहशतगर्दों के एक खुफिया ठिकाने का पता लगाया और दो हैंड ग्रेनेड जब्त किए। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने खबर दी है कि कारिंदे हाजी लतीफ के इंकशाफ के बाद जिले की बिलावर इलाके के बालाई हिस्से से इस खुफिया ठिकाने का पता लगाया गया। उत्तराखंड कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और माशरे में ताहियात सीखने की तफहीम यानी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत बालिगों की खानदगी के मुकर्रा मेयारात पूरे होने के बाद मुल्क की छठी मुकम्मल तौर पर खानदार रियासत बन गई है। हुकूमत हिंद की वजारत तालीम के स्कूली तालीम और खानदगी के महकमे की तरफ से तय करदा खानदगी के मेयारात को पूरा करने के बाद गवर्नर की जानिब से 8 जुलाई 2026 को इस ऐलान की मंजूरी दी गई। भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन ने पिकल बॉल आलमी कप 2026 के लिए भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया है। पिकल बॉल आलमी कप 2026 का इनेकाद वियतनाम के दा नांग में 30 अगस्त से 30 सितंबर तक किया जाएगा। हर्ष मेहता टीम की कमान संभालेंगे। मर्दों के क्रिकेट में आज रात ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में 5 मैचों की सीरीज के चौथे बैन अलावामी टी20 मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम की सप्लाई और अहम मादनियात के मखसूस कॉरिडोर के सिलसिले में तारीखी समझौतों पर दस्तखत किए हैं। साइबर अहम टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पर ऑस्ट्रेलिया भारत शराकतदारी का आगाज हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हमनसब एंथनी अल्बानीज के साथ सालाना सरबराह मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात में वसत पैदा हो रही है जो मजबूत बाहमी एतमाद पर मबनी है। कौमी राजधानी खत्ते में तेज बारिश से मामूलात जिंदगी मुतासर हुए हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में गहरे समंदर में माहीगीरी के वसाइल के पायदार इस्तेमाल के लिए कौमी मिशन का आगाज किया है। कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत मुकर्रर करदा बालिगों की खानदगी हासिल करने के मामले में उत्तराखंड ने मुकम्मल खानदगी हासिल कर ली है और वियतनाम में होने वाले पिकल बॉल आलमी कप 2026 के लिए भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव से 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस मेरी पसंद। ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। आज के प्रोग्राम में चंद वो नगमे हम आपकी नज़र करना चाहेंगे जिनको पर्दे सीमे पर जिंदा और जावेद किया

अदाकार, फिल्मसाज, हिदायतकार गुरुदत्त ने आज उनका यौम पैदाइश है। असल नाम वसंत कुमार शिवशंकर पदुकोणे था। 1925 में जन्म लिया, लेकिन बहुत कम उम्र उन्होंने पाई। लेकिन इस कम अरसे में उन्होंने चंद वो खूबसूरत और अजीम फिल्में हिंदुस्तानी फिल्मी सनत को दी, जिसने उनको हमेशा के लिए अमर कर दिया। आइए उन्हीं के फिल्मों के चंद नगमे आपको सुनवाते हैं।

खो गया यही कहीं जवां है रुस्तम हसीं कहां है दिल किसे पता कहां हूं मैं खबर नहीं मैं खो गया यही कहीं जवां है रुस्तम हसीं कहां है दिल किसे पता।

कहीं सोचता हूँ मगर वो खफा न हो कहीं मैं खो गया यहीं कहीं जवां है रुस्तम हंसी कहाँ है दिल किसे

0: क्या मचल नहीं मैं खो गया यहीं कहीं जवां है रुस्तमा हंसे कहां है दिल किसे पता कहां हूं मैं खबर नहीं मैं खो गया यहीं कहीं जवां है रुस्तमा हंसे कहां है दिल किसे पता कहां हूं मैं खबर नहीं मैं खो गया मैं खो गया मैं खो गया मैं खो गया।
1: प्यास और कागज़ के फूल जैसी अजीम फिल्में बनाने वाले इस अजीम अदाकार ने अपने करियर का आगाज़ 1944 में पुणे की प्रभात फिल्म कंपनी से किया और एक कोरियोग्राफर के तौर पर शुरुआत हुई थी उनके करियर की, और साथ ही साथ मुआविन हिदायतकार के तौर पर भी उन्होंने अपने करियर का आगाज़ यहीं से किया था। यहीं उनकी गहरी दोस्ती नौजवान अदाकार देवानंद से हुई। बाद में उन्होंने देवानंद की कंपनी नवकेतन फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म बाजी से अपने हिदायतकारी के जलवे दिखाए थे।

ये था आरपार फिल्म का नगमा गुरुदत्त, गीता दत्त माफ कीजिए, और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। और अगला नगमा है मिस्टर एंड मिसेस 55 का, इन्हीं दो आवाज़ों में।

0: ये था खराज अकीदत अदाकार गुरुदत्त को उर्दू सर्विस की जानिब से, और यही थी मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशियात आप सुन रहे हैं मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं अपने वक्त के मारूफ अदाकार संजीव कुमार से की गई एक बातचीत की पुरानी रिकॉर्डिंग। आपसे महवे गुफ्तगू थे जनाब के नैयर।
1: देखा है फिल्म दस्तक में और बेहद मसर्रत हुई मुझे आपको उस रोल में देख के। मेरा जी ये चाहता है कि मैं आपके अपने ख्यालात इस रोल के बारे में अपने सामईन तक पहुंचाऊं, तो आप क्या ये बताने की जहमत करेंगे कि ये रोल आपकी अपनी नजर में कैसा है? बहुत से रोल आपने किए हैं।
2: सबसे पहली बात इस रोल के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि मैंने इस फिल्म में जो हीरो का जो कैरेक्टर है उसे कभी एक रोल नहीं समझा। आमतौर से जो पिक्चरें बनती हैं उसमें ज़्यादातर यही होता है, कुछ गाने गाने होते हैं, कुछ रोमांटिक सीन्स होते हैं, और हम जो एक्टर्स हैं कलाकार हैं वो आपस में कभी मजाक भी करते रहते हैं कि भाई ये वो सीन है जहाँ बटन नंबर 4 दबाना है या बटन नंबर 7 दबाना है, और ये इस रोल के बारे में कभी कोई बटन दबाने की जरूरत पड़ी नहीं मुझे। और जब भी सेट पे मैं जाता और जब भी शॉट होता कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं कोई डायलॉग बोल रहा हूँ या कोई सीन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसे रोल कभी नहीं समझा। और बस जब भी सेट पे जाता जब भी कोई शॉट होता तो यही लगता कि मैं बोल रहा हूँ जैसे आम जिंदगी में बातें करता हूँ, और ये जो शख्स है जिसका रोल मैं कर रहा था वो कोई खास टाइप नहीं है, एक आम तौर पे जो आदमी होता है वही है।
1: संजीव कुमार साहब, ये जो आपने इम्तियाज किया है जो आमतौर से फिल्मों में किरदार होते हैं और उससे और इस फिल्म के किरदार से कि आप ये पहचान गए कि ये आम जिंदगी के ज़्यादा करीब है, तो एक मंजिल आपने तय की है और बड़े मुख्तसर से अरसे में आप कामयाबी की बहुत सी मंजिलों को तय कर चुके हैं। मेरा ख्याल है हमारे सामीन ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी फिल्मी जिंदगी का आगाज कैसे हुआ। क्या आपने बचपन में सोचा था कि आप फिल्मों में काम करेंगे, या आपकी जिंदगी की जो जो सफर चल रहा था उसमें यकलख्त ये एक मोड़ आया और आप फिल्मों में चले आए?
2: नहीं जी, शुरू से जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरे ख्याल से उस वक्त मेरी उम्र 13 या 14 साल की होगी, तभी से स्कूल से भागकर स्टूडियो के बाहर खड़ा रहता था मैं, और उसी वक्त से एक ही चीज़ दिमाग में बैठी हुई थी कि मुझे एक्टर बनना है।
1: तो बचपन में आप जब स्टूडियो के बहुत करीब होते थे, फिल्में आपको पसंद थी, तो उन दिनों कौन कौन से अदाकार थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे?
2: वैसे दो तीन नाम लूंगा, वो मेरे ख्याल से बहुत से आर्टिस्टों ने नए कलाकारों ने वही नाम लिए होंगे, मसलन अशोक कुमार, दिलीप कुमार ये। लेकिन मुझे जो इंस्पिरेशन मिली, हौसला मिला, वो राज साहब के वजह से, राज कपूर के वजह से।
1: तो आप समझते हैं कि आपने उनसे उनसे कोई अक्स या रिफ्लेक्शन कबूल किया है, या आपने अपनी अदाकारी में एक अपना नया अंदाज पैदा किया?
2: मेरे ख्याल से मैं अक्सर यही सोचा करता था, लोगों ने मुझे जब मैंने भी राज साहब का कई दफ़ा नाम लिया तो उनको काफ़ी ताज्जुब हुआ कि आप जिस टाइप के परफॉर्मेंस करते हैं या जिस टाइप के आप पर्सनली जो आदमी हैं

0: और जब आप राज साहब का नाम लेते हैं तो काफी ताज्जुब होता है कि उन साहब ने कैसे इंस्पिरेशन ली। तो काफी सोचने के बाद मैंने महसूस किया शायद यही बात होगी कि उनकी अदाकारी में मुझे कुछ वही जोश वही लगन लगा जो मुझे हमेशा होता था। एक जो आर्टिस्ट के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है जो मैं मानता हूँ, शौक तो होता है एक्टिंग का, लेकिन उससे ज्यादा मैं समझता हूँ एक ऑब्सेशन होना चाहिएगा एक कलाकार के लिए, वो बहुत ही जरूरी है। और मुझे पता नहीं उनके काम से या कभी उनको पर्सनली मैं कभी देखता भी, तो मुझे ही लगता कि जो जोश मुझ में है जो सुबह से, मेरे ख्याल से ये जो आर्टिस्ट हैं राज साहब, वो सुबह शाम रात दिन एक ही चीज उनके दिमाग में दौड़ती होगी और वो है एक्टिंग या फिल्म्स। और वही बात मेरे ख्याल से मुझे लगी कि मुझ में भी वही बात है, शायद यही वजह होगी जो मुझे उनसे इतना इंस्पिरेशन मिला।
1: मेरा पहला सवाल कुछ प्यासा सा रह गया है, वो बात अभी तय नहीं हुई कि आप फिल्मों में कैसे आए।
0: शुरुआत मैंने की थी एक एज एन एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद स्टेज पे मैंने काम किया, फिर स्टंट फिल्मों में हीरो का रोल किया, उसके बाद साइड रोल्स किए, और संघर्ष और शिकार तक मैंने साइड रोल्स किए थे। और उसके बाद जो भी कुछ हुआ मेरे ख्याल से वो तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, वो तो फिर आपने भी देखा होगा।
1: नहीं, ऐसा है कि हमारे बहुत से सामयीन ऐसे हैं जिन तक हमारी फिल्में नहीं पहुंचती हैं, तो गालिबन उनकी दिलचस्पी होगी कि वो ये जाने कि कैसे, किस शख्स ने आपका जौहर पहचाना।
0: वैसे तो आसिफ साहब से मेरी मुलाकात हुई थी बहुत पहले, जब मेरी पहली फिल्म भी रिलीज नहीं हुई थी, और उन्होंने उसी वक्त मुझे बिना देखे मुझे सिर्फ दो दो मिनट की मुलाकात में उन्होंने मुझे साइन किया था लव एंड गॉड के लिए। लेकिन वो तो अब तक पिक्चर रिलीज नहीं हुई है, और किसी खास आदमी की वजह से मैं नहीं कह सकता कि मेरा करियर बना या जो कुछ आज जहाँ कुछ हुआ, जहाँ कहीं पहुँचा हूँ मैं, वो मैं किसी खास आदमी की वजह से हुआ ये नहीं कह सकता। बस ये साइड रोल्स करता रहा, आहिस्ते आहिस्ते किसी ने मुझे छोटी पिक्चर में हीरो का रोल दिया, उसके बाद कोई बड़ी पिक्चर बनी उसमें हीरो का रोल दिया।
1: ये छोटी और बड़ी पिक्चर आप किसको कहते हैं?
0: छोटी वो जो लो बजट की होती है, जो लो प्राइस में बिकती है, कम दामों में बिकती है और कम दामों में बनती है, और बड़ी जो बड़े दामों में बिकती है और जिनका बजट बड़ा होता है।
1: आप मतलब फिल्म को पैसों से तोल रहे हैं। मेरा मतलब ये था कि जो छोटे बजट में फिल्म बनती है वो भी बड़ी हो सकती है या नहीं?
0: जी, छोटे और बड़े का मतलब था कमर्शियली मेरा कहना। अब दस्तक मैं कहता हूँ छोटी पिक्चर है बजट वाइज, अब ये बात अलग है कि वो अच्छी पिक्चर है या बुरी पिक्चर है। एक बड़ी पिक्चर जो मैं कहूँगा बहुत ही बड़ी पिक्चर है, बहुत ही बड़े पैमाने पे बनी है, वो पिक्चर बुरी हो सकती है। और दस्तक जैसी पिक्चर जो मेरे कमर्शियल हिसाब से छोटी पिक्चर है, उस बड़ी पिक्चर से अच्छी हो सकती है।
1: आप अदाकार हैं तो अदाकार को, जैसे आपने कहा कि किसी भी फिल्म आर्टिस्ट को ऑब्सेशन होना चाहिए, तो जो शख्स इस बात में यकीन रखता हो, जाहिर है कि वो पैसे को फन के मुकाबले में ज्यादा अहमियत नहीं देगा।
0: जी हाँ,
1: तो आप समझते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तवाजुन क्या है? आजकल पैसा ज्यादा जरूरी है, पैसे की अहमियत ज्यादा है, या फिल्म की, आर्ट की अहमियत ज्यादा?
0: जब एक आर्टिस्ट शुरू में आता है, पहली पिक्चर जो उसकी होती है, उस वक्त तक वो ऑब्सेशन काम आता है, और उसी का नतीजा जो होना होता है, जो फल उसको मिलना होता है वो मिलता है। और बाद में एक और भी बात है, ये कमर्शियल लाइन है, यहाँ कौन सा कलाकार चाहे उसमें काबिलियत हो या ना हो, कब तक टिकेगा, क्या होगा उसका हशर बाद में, वो कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं अपना अपनी बात करता हूँ, जब मैं मेरी पहली पिक्चर निशान में काम कर रहा था, दिन रात मेरे दिमाग में वही रोल घूमता था, और सुबह से शाम तक रात को सोते वक्त भी मैं वही डायलॉग्स याद करता था और ये सब बातें होती थी। जब वो पिक्चर रिलीज हुई और थोड़ी सी कामयाबी मुझे मिली और फिर जो पिक्चरें मिलने लगे, तो वो ऑब्सेशन कम होने लगा, और फिर दिमाग में यह बात आ गई कि आगे क्या होने वाला है मेरा। तो मेरे हिसाब से हर कलाकार के साथ ये होता है, शुरू में ऑब्सेशन रहता है, बाद में थोड़ी सी कामयाबी

0: मिलती है तो उनका ट्रैक दूसरी तरफ चला जाता है। और एक आदमी इस कमर्शियली दुनिया में रहते हुए ये सोचता है कि फ्यूचर के लिए कुछ अपनी सिक्योरिटी बना लें, और कुछ हद तक वो बात रहती है, लेकिन उस हद तक पहुंचने के बाद फिर वो ऑब्सेशन शुरू हो जाता है। और ये मैं अपने एग्जाम्पल से कहता हूँ।
1: आप जैसा कलाकार जिसको कामयाबी मिली हो और बहुत से रोल मिले हों और एक साथ बहुत सी फिल्मों में काम करना पड़ रहा हो, तो एक साथ बहुत से किरदार निभाना आप समझते हैं कहाँ तक मुमकिन है? कोई दुश्वारी होती है? एक ही साथ बहुत सी जिंदगियां जीना क्या मुमकिन है?
0: वो तो आर्टिस्ट की काबिलियत पे रहता है। एक आर्टिस्ट, एक कलाकार दो दो पिक्चरों में एक साथ काम करें तो वो मुश्किल हो जाता है उसके लिए, उन दो रोल्स को निभाना एक साथ। मैं पर्सनली यही बिलीव करता हूँ, फॉर जैसे कि खिलौना या दूसरा दस्तक या खिलौना, जब मैं उन पिक्चरों की मैं शूटिंग करता था, हमेशा साथ साथ दूसरी एक या दो पिक्चरों की शूटिंग साथ साथ रहती थी मेरी। अब ये अलग बात है, अब तो ये तो जब एक्सपीरियंस होगा मुझे, अब के साथ 6 महीने या 8 महीने के बाद जब मेरी पुरानी कमिटमेंट सब खत्म हो जाएंगी और मैं साल में 3 या 4 पिक्चरें लूंगा और साथ एक वक्त एक ही पिक्चर में काम करूंगा, उसका जो नतीजा निकलता है उसे देखने के बाद पता चलेगा कि कितना फर्क होता है।
1: आप जब कोई रोल कबूल करते हैं तो क्या देखते हैं उसमें? कैसा रोल होना चाहिए जिसको आप पसंद कर लें?
0: मेरी कोई रोल के मामले में कोई खास पसंदगी है नहीं। मैं आज तक जितनी भी पिक्चरें की हैं, ज्यादातर यही हुआ है कि या किसी की दोस्ती की वजह से की है, या किसी को हेल्प करने की वजह से की है, या पैसों की वजह से की है, या एक आध दो पिक्चरें रोल की वजह से भी की है। मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट के लिए रोल छोटा भी हो, अगर उसमें कुछ बात होती है, एक आर्टिस्ट छोटे से रोल में भी अगर उसमें टैलेंट्स हैं तो वो दिखा सकता है।
1: आपने अब तक जितने किरदार निभाए हैं, जाती तौर पे आपको कौन सा पसंद है? ये सवाल कुछ अटपटा सा है, लेकिन मेरा जी चाहता है मैं आपसे पूछ लूं।
0: मेरी पहली फिल्म निशान, उसमें मुझे अपना रोल बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि उसमें डबल रोल था, हीरो और विलन का। फिर शिकार, संघर्ष, खिलौना, दस्तक और उस रात के बाद।
1: आपने बहुत से कलाकारों के साथ काम किया है, किसके साथ काम करके आपको वो तसल्ली, वो खुशी हुई है जो किसी भी फनकार को हो सकती है?
0: वैसे नहीं साहब, मैंने बहुत से आर्टिस्टों के साथ काम किया है और बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मुझे काम करने का बड़ा मजा आया है। वो जो सब आर्टिस्ट हैं उन सब के नाम नहीं लूंगा क्योंकि अगर मैंने सब के नाम ले लिए तो जिनका नाम रह जाएगा वो सब बुरा मानेंगे। मैं सिर्फ दो तीन आर्टिस्टों का नाम लेता हूँ। एक तो तनुजा है, वहीदा रहमान, शर्मिला टैगोर, शत्रुघ्न सिन्हा, ये तीन चार नाम है।
1: आपके दिल में किसी आर्टिस्ट के साथ काम करने की आरजू है? जी चाहता है कि उनके साथ भी काम करूं।
0: वैसे तो मैंने मेरे ख्याल से सभी के साथ काम किया है, तो आपका सवाल है या दोबारा करना चाहता हूँ या कोई और ऐसा आर्टिस्ट है जिनके साथ मैंने काम नहीं किया और
1: जाहिर
0: करना
1: है
0: चाहूँ।
1: कि फिल्म इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों के साथ तो आपने काम नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ बच गए होंगे और आपके दिल में आरजू होगी कि काश मैं उनके साथ भी किसी फिल्म में काम करूं। जी चाहता है।
0: जैसे मैंने कि पहले बताया था, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिली, राज कपूर, राज साहब, उनके साथ मैंने आज तक काम नहीं किया और वही एक आर्टिस्ट मेरे ख्याल से रह गए हैं जिनके साथ काम करने की मेरी ख्वाहिश है।
1: ये सवाल मेरा इसी जवाब के लिए था। संजीव साहब, अब तक ऐसा रहा है कि लोग ये सोचते रहे हैं कि बड़ा नाम अच्छी और कामयाब फिल्म की गारंटी है। इसमें कई बार ऐसा भी हुआ है कि ये वहम ही साबित हुआ, और कुछ तजुर्बा जो हाल ही में हुआ है, कुछ ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें नए नाम, नए अदाकार थे और कामयाब

0: तो आप क्या समझते हैं कि बड़ा नाम होना किसी फिल्म की कामयाबी की गारंटी है, या छोटे नए नाम से भी फिल्म अच्छी बन सकती है?
1: जैसे मैंने पहले कहा था नैयर साहब कि बड़े कलाकार के साथ बड़ी फिल्म बनती हैं, बड़ा जो बजट होता है वो बड़ी फिल्म होती है। छोटे कलाकार कमर्शियली छोटे, मेरा मतलब है जो नए हों या जिनका नाम ज़्यादा ना हुआ हो, छोटे कलाकार तो नहीं कहूँगा, छोटे स्टार्स के साथ जो पिक्चरें बनती हैं छोटे बजट में, वो छोटी पिक्चरें होती हैं। लेकिन फिर मैंने वही बात कही थी कि एक बड़ी पिक्चर बुरी पिक्चर हो सकती है और एक छोटी पिक्चर अच्छी पिक्चर हो सकती है। तो ये जो छोटे कलाकारों को लेकर छोटी पिक्चरें बनी हैं, कमर्शियली छोटी लेकिन वो पिक्चरें अच्छी बनी हैं और कामयाब हुई है, तो बात घूम घाम के वही आ जाती है कि मेन बात जो है वो पिक्चर की है, अच्छी या बुरी, बड़ी या छोटी, वो प्रोड्यूसर के लिए होती है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होती है, एग्जीबिटर के लिए होती है। ऑडियंस के लिए पिक्चर बड़ी या छोटी नहीं होती, अच्छी या बुरी होती है।
0: तो आपने जो नई फिल्में देखी हैं जिनमें यह नया अंदाज है, इनमें आपको कौन कौन सी अच्छी लगी हैं?
1: मुझे ये सारा आकाश अच्छी लगी, भुवन शोम अच्छी लगी, और खामोशी, अनोखी रात, बहुत सी पिक्चर हैं।
0: आप समझते हैं कि इन फिल्मों का मुस्तकबिल कैसा है? अच्छा है?
1: जी हाँ, क्योंकि ये जितनी भी पिक्चरें हैं उनमें आमतौर की जो बातें होती हैं वो नहीं है, नई चीज़ हैं। और आजकल का जो जेनरेशन है वो हमेशा नई चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर जहाँ तक नई चीज़ें और अच्छी चीज़ें आती रहेगी, उसके लिए लोग हमेशा तैयार रहेंगे।
0: आपने बहुत से डायरेक्टरों के साथ काम किया होगा। डायरेक्टर की मुट्ठी में पूरी फिल्म रहती है, पूरा नक्शा रहता है। चंद एक डायरेक्टर जिनके काम से आपको न सिर्फ तसल्ली हो बल्कि खुशी हुई हो, उनका आप जिक्र करना चाहें तो कीजिए।
1: वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन फिर वही बात दोहराऊंगा, मैं सबके नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ दो डायरेक्टरों के नाम लेता हूँ। एक तो आसिफ साहब थे और महेश कौल।
0: ये क्यों अच्छे लगते हैं?
1: इनके साथ जब भी मैंने काम किया, हमेशा रोज हर शॉट में हर सीन में कुछ नई चीजें सीखने को मिली मुझे।
0: उनमें से किसी का जिक्र कर सकते हैं आप,
1: जिक्र यानी किस तरह?
0: जो आपको अच्छा लगा, जो आपने सीखा उनसे और वो आपके दिल में नक्श हो गया, आपको भूला न हो, याद हो?
1: ये जो चीजें कलाकार की हैसियत से मैंने सीखी है, वो तो खैर मैं बयान तो नहीं कर सकूंगा, महसूस ही कर सकता हूँ। और वो सब चीज़ें जो मैंने सीखी हैं वो मेरे आइंदा फिल्मों में, आइंदा जो मेरा काम चलता रहेगा उसमें मुझे बहुत ही मदद मिलेगी उससे। और वो जो बातें हैं वो सिर्फ एक कलाकार महसूस कर सकता है, मेरे ख्याल से ठीक से समझा नहीं पाएगा वो।
0: आपने फिल्में जो बनाई हैं बहुत सी, कई बार ऐसा होता है कि कोई खास सीन दिल में अटक जाता है, लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ है। कोई याद है सीन ऐसा आपको, किसी भी फिल्म का हो?
1: वैसे तो नहीं है साहब, कई इंसिडेंट्स हैं, लेकिन इस वक्त मुझे एक याद आ रहा है हादसा। वो फिल्म है उस रात के बाद,
0: जी
1: उसमें मैंने डबल रोल किया है, फादर बाप और बेटे का। उसमें तनुजा मेरी बेटी बनी हुई है और बहन भी बनी हुई है। उसमें एक सीन था कि जो बेटी है वो बाप से झगड़ कर घर छोड़ के जा रही है, और ये बूढ़ा आदमी हो चुका है और अपनी बेटी को गले से लगा कर कहता है कि मैं एक सूखा पत्ता हूँ, किस वक्त
0: टूट कर
1: टूट
0: गिर
1: के

0: फिर जाऊंगा, इस किस्म का कुछ डायलॉग था और बड़े इमोशनल होके ये बोलना था। और बेटी से इल्तिजा करता है कि इस वक्त मुझे छोड़कर मत जाओ वगैरह वगैरह। तो वो सीन जब मैंने किया तो कट होने के बाद पता नहीं क्या बात हुई, मुझे ये जो आर्टिस्ट है तनुजा, यही महसूस करता रहा कि वाकई ये मेरी बेटी है। और जब पैकअप हुआ और जब जा रही थी तो फिर मैंने उसे पकड़ लिया, फिर अपने गले से लगा लिया और मैंने उसे कहा कि वाकई जी चाहता है तो मैं यही कहूँ कि तुम मत जाओ छोड़ के बेट। और ये भी कुछ फीलिंग महसूस हो रही थी कि वाकई ये कुछ मेरी बच्ची है, ये कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो ना तो मैं समझा सकता हूँ और
1: महसूस आपने
0: महसूस कर
1: संजीव
0: सकता हूँ बस।
1: साहब, ये जो फिल्म आर्टिस्ट होता है उसका नाता फिल्म देखने वालों से कुछ बड़ा अजीब सा होता है। स्टेज पे नाटक होता है तो एक्ट करने वाले को लोग बाद में फौरन मिलते हैं, सामने भी देखते रहते हैं, लेकिन ये जब तक फिल्म लोग देख नहीं लेते तो पता नहीं लगता कि उनको कैसी लगी। तो बहुत से लोग आपकी अदाकारी के चाहने वाले आपसे मिलते होंगे, किसी एक की बात जो आप ये समझें कि आपके फन पे पूरी उतरती है और आपको पसंद भी है।
0: वैसे तो आम तौर से जो मिलते हैं वो यही कहते हैं कि हमको उस फिल्म में आपका काम बहुत अच्छा लगा, या उसमें ठीक नहीं लगा, या वो डायलॉग हमको बहुत पसंद आया, और इस किस्म के रोल आप करते हैं तब हमको पसंद हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं। लेकिन कोई ऐसा रिमार्क या कुछ ऐसी बात जो मुझे अब तक याद हो, अगर आप वो सुनना चाहें, तो वो फिल्म का एक्सपीरियंस नहीं है, स्टेज का एक एक्सपीरियंस है, जो अगर आप चाहें तो मैं बता दूं आपको।
1: जी इरशाद।
0: मैंने एक प्ले किया था, आर्थर मिलर का प्ले था, ऑल माय सन्स, उसका हिंदी में एडेप्टेशन हुआ था, जिसमें मैंने वो मेन रोल जो बूढ़े का है वो किया था। और मेरे ऑपोजिट मेरी बीवी का रोल, उस वक्त मेरी उम्र मेरे ख्याल से 21 या 22 साल की होगी, लेकिन लीला चिटनेस ने किया था। और उसी प्ले के लिए मुझे महाराष्ट्र स्टेट से अवार्ड भी मिला था। खैर, तो वो प्ले जब चल रहा था एक दिन, तो मेरे कुछ को आर्टिस्ट हैं जो उस प्ले में काम कर रहे थे, उनके कुछ रिश्तेदार आए थे देखने। प्ले खत्म होने के बाद हम उसी दोस्त की गाड़ी में हम लोग जा रहे थे और उसके रिश्तेदार भी उसमें थे। तो प्ले की बात निकली तो उन लोगों ने कहा कि हमको तो खैर सबका काम ठीक लगा, लेकिन वो जो बुड्ढा था उसका काम बहुत अच्छा लगा, और मुझे पूछने लगे आपकी क्या राय है
1: तो क्या
0: आप।
1: कहा आपने?
0: मैंने कहा हाँ, आप अगर समझते होंगे तो ठीक था, लेकिन उस जगह पर मुझे वो कुछ खटकने लगा, वहां कुछ मुझे ठीक नहीं लगा। बोले नहीं साहब, आपने गौर से नहीं देखा होगा, हमको तो वही रोल अच्छा लगा, और क्या आप हमसे आप हमारी बात को नहीं मानते। खैर, मैं चुपचाप रहा, और जब मैं मेरा घर आ गया, मुझे जब मेरे दोस्त ने छोड़ा, तो जाते वक्त उस दोस्त ने मेरा परिचय ठीक से करवाया कि ये वही आदमी है जिसने वो रोल किया था। तो खैर, उनके साथ जो गुजरी होगी वो तो आप सोच सकते हैं, लेकिन ये हादसा मेरे ख्याल से जिंदगी भर याद रखूंगा मैं।
1: आप मजा लेते रहे उनकी लालिमा का। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जब शुरू शुरू में आपने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो आपने अपनी आवाज को पूरी तरह ढाला नहीं, जिस तरह आप अब मकाल में अदा करते हैं उस अंदाज में पहले अंदाज में थोड़ा फर्क है। आप समझते हैं कि आपने कोई मेहनत की है इस सिलसिले में?
0: मेहनत की वो तो बात है, लेकिन एक मेरे हिसाब से एक कॉन्फिडेंस की बात है। जब एक आदमी में कॉन्फिडेंस आता है, ये तो अब बात वैसे ही आमतौर से लोग कहते हैं कि अब इसकी आवाज़ खुलने लगी है, या ये अब बोलने लगा है, या कुछ वो वही बात है मेरे ख्याल से, किसी तरह उसी बात। क्योंकि जब मैं स्टेज पे आमतौर से जब मैं प्रोड्यूसर से मिलता, तो कई लोगों का यही कहना था कि हम यकीन नहीं कर सकते ये आदमी एक्टिंग भी कर सकते, इसके मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो ये शिकायत बहुत से लोगों थी पहले से ही, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर उसमें वही बात है कि कॉन्फिडेंस की बात थी।
1: वैसे अब जो आपकी बात सुन रहे होंगे उनको काफी एतमाद होगा कि आप खूब बोलते हैं। इंसान की जिंदगी में चाहे वो कितनी भी कामयाबी हासिल कर ले, कोई ना कोई हसरत बाकी रह जाती है कि ये भी हो जाए तो अच्छा है। कोई हसरत है आपके दिल में जो आप समझते हैं कि अभी तक जितनी आरजुएं थी वो तमाम पूरी नहीं हुई?
0: आरजुएं तमाम नहीं थी, एक ही आरजू थी, और वही आरजू अभी तक खत्म नहीं

0: ही अच्छे बहुत ही बड़ा कलाकार बनने की, और मेरे हिसाब से अभी तक वो बात हुई नहीं है।
1: आप समझते हैं कि अभी आपको इत्मीनान नहीं है जिस मंजिल पे आप पहुंचे हैं, उससे आगे बढ़ना चाहते हैं?
0: जी हाँ, जिस मंजिल पे मैं पहुंचना चाहता था और पहुंचना चाहता हूँ उससे तो अभी बहुत ही दूर हूँ।
1: कोई अपनी फिल्म बनाने का इरादा है आपका? वैसे अक्सर होता है कि कामयाबी मिलने के बाद लोग अपनी फिल्म बनाने की सोचते हैं, आपने सोचा है कभी?
0: खैर फिलहाल तो नहीं, कुछ ऐसे बाद जब मेरी पुरानी जो कमिटमेंट्स हैं उनसे थोड़ी सी फुर्सत मिल जाएगी और जब मैं साल में एक या दो या तीन पिक्चरों में काम करने लगूंगा उसके बाद शायद कुछ इरादा है वैसे मेरा।
1: कैसी फिल्म होगी वो?
0: वो फिल्म छोटी होगी, मतलब बड़े बजट की नहीं होगी, बड़े कलाकार उसमें नहीं होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छी बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और जो आमतौर से जो पिक्चरें बनती हैं डेफिनेटली उससे हटकर ही बनाने की कोशिश करूँगा।
1: कहानी के पे ज्यादा आप तवज्जो देंगे?
0: ना सिर्फ कहानी पे, आर्टिस्ट हूँ कलाकार हूँ इसलिए वो एक ऑब्वियस बात है कि रोल का भी मैं भी चाहूँगा कि जो रोल जहाँ मुझे भी ज़्यादा स्कोप मिले एज एन एक्टर वो भी बात वहाँ ज़रूर होगी। कहानी खैर कहानी तो होनी ही चाहिए, वो तो मेन बेस है पिक्चर की।
1: ये एक अंदाज सा रहा है कि हमारी फिल्मों में जो फिल्मी नाम हैं, दिलीप कुमार, राजकुमार, बहुत से, मतलब कुमार का लफ्ज़ ज़रूर आता है। आपने अपने नाम में ये लफ्ज़ किसी खास मसलहत की वजह से रखा है या आप?
0: वो जी मेरा असली नाम या अपना नाम है हरिहर,
1: अच्छा नाम है।
0: और मैंने शुरुआत की स्टंट पिक्चरों से और मुझे डर यही था कि ये स्टंट पिक्चरों से मैं अपना कैरियर अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहा हूँ कलाकार की हैसियत से, तो शायद ये अगर नाम रखूँगा हरिहर तो मैथोलॉजीज में एंड अप हो जाएगा मेरा कैरियर, क्योंकि ये नाम जो है वो ऐसा नाम नहीं है जो ऑडियंस
1: जल्दी से अपना ले,
0: जल्दी से अपना लें।
1: वैसे इसमें भक्ति रस काफी है।
0: तो इसलिए तो मैंने कहा कि फिर डर यही था कि स्टंट से शुरू होकर मेरा कैरियर मैथोलॉजी में ख़त्म ना हो जाए, इसलिए वैसे ही कुछ खास वजह नहीं थी ये कुमार रखने की, लेकिन जब मैंने सोचा कि बाकी सब चीज़ें तो हो गई ही लेकिन क्यों ना एक ऐसा नाम रखा जाए जो आसानी से लोगों के ज़बान पर भी चढ़ जाए।
1: तो नाम आपने खुद रखा या किसी ने रखा
0: जी हाँ
1: आपके
0: मैंने
1: लिए?
0: खुद रखा।
1: ये नाम आपको पसंद है?
0: ठीक है वैसे मेरे ख्याल से बुरा तो नहीं है
1: नहीं, मुझे तो अच्छा
0: इतना।
1: लगता है, मैं चाहता था आपकी राय ले लूं। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं?
0: मैं सूरत का रहने वाला हूँ, गुजरात का।
1: तो हिंदी और उर्दू बोलने में आपको कोई मुश्किल तो नहीं लगती?
0: मुश्किल खैर क्योंकि मेरी पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी और जिस माहौल में मैं घूमता था ज़्यादातर लोग पंजाबी थे, मुस्लिम्स थे, पंजाबी थे, और इप्टा में मैंने काम किया इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, वहाँ पर मैंने बहुत सालों तक काम किया, तो वहाँ माहौल वही होता था हिंदी बोलने वालों का और उर्दू बोलने वालों का।
1: पिछले दिनों बहुत सी खबरें आई हैं आपकी शादी के सिलसिले में। एक ही मामला है जिसमें इंसान की अपनी राय चलती है, तो आप इस बारे में कुछ रोशनी डालेंगे कि आप शादी करना चाहते हैं? चाहते हैं तो कब और किससे?
0: तीन सवाल आपने पूछे हैं, शादी करना चाहते हैं मेरे ख्याल से ये पहला सवाल था
1: जी
0: वो तो जी, उसके लिए तो कोई ये तो मेरे ख्याल से सवाल ही नहीं है, ज़रूर करना चाहता हूँ,
1: कब?
0: ये मैं खुद ही नहीं बता सकता
1: ये कौन तय करेगा?
0: क्यों। मैं इसका मेरे ख्याल से जवाब जो तीसरा आपका सवाल है उससे लिंक होता है कि किससे,
1: जी, तो उसी का जवाब दीजिए।
0: तो वो किससे मतलब जिससे भी करना चाहूँगा वो जब मिल जाए तब वो कब का जवाब हो सकता है।
1: नहीं, मैं अपने सवाल की वजाहत करता हूं, वो कैसी लड़की होगी?
0: कैसी है मैं जो आम तौर से होनी चाहिए, ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं, ज़्यादा मॉडर्न भी नहीं, एक जो ग्लैमर का माहौल रहता है फिल्म लाइन में उस टाइप की ज़रूर नहीं।
1: एक बात मैं आपसे पूछना भूल गया था, उसके लिए माफी चाहता हूं। ये बताने की जहमत कीजिए कि अब किन किन फिल्मों में आप काम जो आप
0: ये

0: टेढ़ा सा सवाल है। टेढ़ा सा सवाल तो खैर नहीं है, जवाब देना ज़रा
1: मुश्किल
0: मुश्किल
1: है।
0: हो रहा है, क्योंकि एक तो खाली वक्त मिलता ही नहीं है, और अगर मिल जाता है तो शौक तो मुझे एक ही है जो शुरू से था और अब भी है और मेरे ख्याल से रहेगा, और वो है फिल्म पिक्चरें देखना।
1: तो ये तो आपका पेशा हो गया।
0: पेशा अब हो गया, पहले सिर्फ शौक था, अब पेशा भी है और शौक भी है। वैसे मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन उसके लिए वक्त इतना मिलता नहीं है। इस वक्त मेरे पास पैसे हैं, वक्त नहीं है, तो मैंने बहुत सारी किताबें ले रखी है, कुछ मेरे ख्याल से 1000-1500 किताबें होंगी। यही सोचकर कि जब वक्त मिलेगा उस वक्त पैसा नहीं होगा, तो इस वक्त पैसा है तो ले लो किताबें और रख लो, वक्त मिलेगा तब किताबें पढ़ेंगे।
1: संजीव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कीमती वक्त अपना दिया और बहुत सी बातें ऐसी बताई जिसमें हमारे सामने की दिलचस्पी होगी। आदाब।
2: अभी आप सुन रहे थे मारूफ अदाकार संजीव कुमार से की गई बातचीत की एक पुरानी रिकॉर्डिंग। आपसे महफ़ गुफ्तगू थे जनाब के नय्यर। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव से 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारे नशा जारी हैं। पेश खिदमत है फिल्मी मौसीकी। आगाज मंचरी फिल्म के नगमे से मुकेश का गाया हुआ ये नगमा।

जी, आप सुनिए अनामिका फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में, नगमा निगार मजरूह सुल्तानपुरी, मौसीकी आर डी बर्मन की।

ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगला नगमा मुकेश का गाया हुआ अनोखी रात फिल्म से।

0: सीता और गीता फिल्म का ये तो गाना आप सुन रहे थे, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। और जब सुनिए खिलौना फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी का गाया हुआ।
1: खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। खुश रहे
0: नगमा निगार अनिल बख्शी, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश राजा और रंक, फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

लीजिए सुनिए, देवता फिल्म का दो गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ, मौसीकी आर डी बर्मन की।

फिल्मी मौसीकी की आखिरी पेशकश दस्तक फिल्म का नगमा लता मंगेशकर का गाया हुआ। नगमा निगार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, मौसीकी मदन मोहन की।

0: दस्तक फिल्म के इस नगमे के साथ ही फिल्मी मौसीकी का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। शाम के 4:50 हुए हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम की सप्लाई और अहम मादनियात के मखसूस कॉरिडोर के सिलसिले में तारीखी समझौतों पर दस्तखत किए हैं। साइबर, अहम टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पर ऑस्ट्रेलिया भारत शराकत दारी का आगाज हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथनी अल्बनीज के साथ सालाना सरबराह मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात में वसअत पैदा हो रही है जो मजबूत बाहमी एतमाद पर मबनी है। कौमी राजधानी खित्ते में तेज बारिश से मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए हैं। नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन ने भुवनेश्वर में गहरे समंदर में माहीगीरी के वसाइल के पायदार इस्तेमाल

0: के सबब बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। मरकजी और मगरबी रेलवे की टीमें मरबूत तरीके से काम कर रही हैं। जनाब वैष्णव ने बताया कि एक रेलवे लाइन को बहाल कर दिया गया है और महकमे ने इस लाइन पर तमाम ट्रेनों को दो इंजनों के साथ चलाने का फैसला किया है। भारत की ब्रिक्स 2026 के जेर सदारत तीसरी ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वजरा की मीटिंग के मौके पर आज नागपुर में ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आगाज हो गया है। वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के बाद मीडिया के अफराद से बात करते हुए ट्रांसपोर्ट के मरकजी सेक्रेटरी वी उमाशंकर ने कहा कि सीनियर अहदेदारान ने मोबिलिटी, शहरी बुनियादी ढांचे, पायदार तरक्की जैसे अहम मामलों पर तबादले ख्याल किया। हुकूमत ने ज़राअत में मशीनों के इस्तेमाल से मुताल्लिक ज़ेली मिशन के तहत मुल्क भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मालियत की तकरीबन 22 लाख ज़रई मशीनें फराहम करने की हिमायत की है। ये मिशन ज़राअत में मशीनों के इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए साल 2014-15 में शुरू किया गया था, जो मुल्क में ज़रई पैदावार को बढ़ाने के सिलसिले में इंतहाई अहम रोल अदा करती हैं। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी दस्तों ने कल कठुआ जिले में दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने का पता लगाया और दो हैंड ग्रेनेड जब्त किए। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने खबर दी है कि एक कारिंदे हाजी लतीफ के इंकशाफ के बाद जिले के बिलावर इलाके के बालाई हिस्से से इस खुफिया ठिकाने का पता लगाया गया। रबाग के बाशिंदे लतीफ को 2 जुलाई को हिरासत में लिया गया था और उस पर गुजश्ता बरस में सरहद पार से मुतादिद दहशतगर्दों को दरअंदाजी में सहूलत पैदा करने का इल्जाम है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां उससे मुश्तरक तौर पर पूछताछ कर रही हैं। भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन ने पिकल बॉल आलमी कप 2026 के लिए भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया है। पिकल बॉल आलमी कप 2026 का इनेकाद वियतनाम के दा नांग में 30 अगस्त से 6 सितंबर तक किया जाएगा। मर्दों के क्रिकेट में आज रात ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में 5 मैचों की सीरीज के चौथे बैन अल्कवामी T20 मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम की सप्लाई और अहम मादनियात के मखसूस कॉरिडोर के सिलसिले में तारीखी समझौतों पर दस्तखत किए हैं। साइबर अहम टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पर ऑस्ट्रेलिया भारत शराकत दारी का आगाज हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हममनसब एंथनी अल्बनीज के साथ सालाना सरबराह मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात में वसअत पैदा हो रही है जो मजबूत बाहमी एतमाद पर मबनी है। कौमी राजधानी खित्ते में तेज बारिश से मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने भुवनेश्वर में गहरे समंदर में माहीगीरी के वसाइल के पायदार इस्तेमाल के लिए कौमी मिशन का आगाज किया है और वियतनाम में होने वाले पिकल बॉल आलमी कप 2026 के लिए भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज होने आएगा और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।
2: अभी तक आप हमारी नशरियात आकाशवाणी के उर्दू सर्विस से समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव 1584 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज़ से है। सामीन अब से लेकर शब ठीक 10 बजे तक हमारी नशरियात आप मीडियम वेव 684 किलो हर्ट्ज के अलावा FM 100.1 मेगा हर्ट्ज और साथ ही साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी समाप्त कर सकते हैं। समय हमारे अगले ऐलान का आप इंतजार कीजिए। मीडियम वेव सोची नगबियाना निशुजी नजबी किलो हर्ट्ज मीडियम वेव त्रुगियाना निशुजी नजबी किलो हर्ट्ज यंग FM रिया शेर चिक मेगा हर्ट्ज दोना न्यूज ऑन AIR एबी कंगा चा आकाशवाणी करगिल ना जरिंचियोत दिने जा पुब्रस्पुत दोना जुलाई जेर गो आकाशवाणी करगिल के नगा चिदिम खचुबत पी फ्रमाचिक प्रोग्राम नेम बंगा चे एन तिश दल दिपसोत प्रोग्राम यन खान सरमत सुनसे चेन मुंदोना का फोनन सगा गा चिशिदान अस्सलामु अलैकुम वक्स पुदर फिदो तो सुद गा सुन सुकस्तन अची दिरी दोया प्रोग्राम सदाकत लगो जुकबे दी प्रोग्राम पिरख से कंतिस न्यान मजद तरसाम कुरानी तिलावत न तर्जुमा ले बिस्मिल्लाह
3: बिस्मिल्लाह।

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون.

0: ميديا ميو دون اف ام جاناليكا ديو اكاش فاني كارجلين وقت بدري في دوتو صوتو غانا فات سون سوكاستر دلوكسي حقوي بروغرام بلانتس ين مزاد
1: دي بولي تيكس بون غتي فرون لاستر بمينا غتي زلي كارجيل انو تشي تشي انتظام باسيوت فريك جام سيوت ديس كور لاجيك فاس باس بون نواش
2: يا كاسلي تدا سان اتا دي بوليو ايراديكيشن فيس ان غاي 21 जनवरी पे गए लगभग पूरे डिस्ट्रिक्ट ना तैयारी सो से ले गाती ला दक्षा टोटल गया पब्लिश 21 दिसंबर दिसंबर कैसे ले सो पर गाता दे भी बेनिफिशरीज या 0 टू 5 गए थ्रू लतांग चिन ले दो गाती ला 12795 गाती ला दक्षा टारगेट पे उत ले लेकिन दी टारगेट पे बड़ा ही चार चीज ना हो सकता है कहीं ले से कोई आ जाए कोई श्रीनगर से आ जाए गाती ला दक्षा कम चांस है लेकिन फिर भी बढ़ सकता है लेकिन गाय दे ऐसा है इंतजाम चुस्त ले जो गाय टारगेट पे पूरे डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट ना ते भी गाय दक्षा बूथ लेवल से जन्ना का तो मतलब हर जगह का गाय खूब और चीन मिले सेंटर वैक्सीन तंगते से सेंटर दो गाय ला 384 बूथ जोत ले पूरे डिस्ट्रिक्ट ना ले सोमवार तेना जो गाय ला पीपीआई टीम गाय मैन पावर गाय खोचो चले लगभग 384 टीम खोलो टीम ना चार मी हो चिन कम से कम चार मी हो चिन सोमवार देना चुला गाय था यहाँ से ना गाय वैक्सीन भी गाय ला युद्ध कर भी पूरा गाय वैक्सीन पूरा युद्ध ले गाय दक्षा क्यों से 13,742 गाय डोजेज भी गाची ला दक्षा छिटोर युद्ध ले अब तंग जाए दू फेस सुम ना चाचन ने चिक पोट 21 जनवरी 2 दिसंबर खोलांग चाचन बूथ लेवल का ते के अपने गए टीम उन नेक्स्ट डे जागमानीस पो खांग पाए स्कूटी ने चंग मचाक चो कोई लुस्त मिनो जे थे सोंग पा इना वो चोस थे ना गए थे ना कंक्लूजन कतो इनकी गाता यू ऑल इंडिया मतलब पूरा इंडिया गाता फ्री सॉन्ग थी तेना मतलब कायम चोचेस मेंटेन चोचेस भी गए पब्लिक करे ताउन बुमा जरूरी ले
1: बिल्कुल जो chana khas kar ngati zille kargil yanuk yante sang di phul la di thikspa tang meming na intizam ba sin suju chana khas kar ta ngata nga du chet ga phul la di thikspa tang chain chikpa du nispa yare samos ki ga phik lu suka to yot narek door to door yani zgoi ka so se ko phul la katra chiba sang thop chuk chin suk chana ga phik agar bimar ka to narek जर्मे यों से छंपे यों से उतना कहता हूँ दो अंतांग में जरूरी ना जो गाचू का इंतजाम चिपा से दो
2: माना जरूरी नहीं है दी के पोलियो वैक्सीन है करना माना खा साइड इफेक्ट छछा में बाकी जैसे गाता टेटना शीतांग ना इंजेक्शन करता हूँ ना माइनर साइड इफेक्ट जैसे फीवर छिचिन पोलियो करें तो छिचा मिल लेते फिर मेहरबानी युवा तेना इनमी संगमा कि मतलब छंपे हल्के की उतना कह तो माना रिफ्यूज में बचा कोशिश मुहिम कामयाब बराबर बिल्कुल बराबर
1: लमोस की खास कर मेडिकल सेंटर में यूल चो से होता है
2: कसले युद्ध दसा मिसाल तो दसंगता बरू युक्त बरू गए कम से कम चार सेंटर युद्ध बरू खुराना
1: अच्छा
2: सेंटर गए चिक चिक बन में लेकिन गए बूथ पो चार से जगह के चोस्त ले ताकि पॉपुलेशन लगा हुआ कुछ चीज ना था कैटरिंग चो चीज चचेस ले
1: दना चोगा यूल यूल लंग चोस
2: कसा बिल्कुल हर जगह चोस्त ले
1: छाना दी साइड इफेक्ट क्या चाचा मैं सुख छाना डिस्ट्रिक्ट करगिल अनु खास कर गति जिले करगिल इस पर आताना या गता थगरेज यूल यू दे इलाका ने अनुक दी पोलियो वैक्सीन पे लेप्सी ना या दूनी अमला सख दूने अनुक यंत्र स्क्रैली ना जो
2: नाचस माना पोलियो वैक्सीन यंपु टीम यंपु वैक्सीन ऑलरेडी डिस्पैच उस दिन ले जैसे गता शादे युद्ध संस्कार ला शून युद्ध गता इक गता सर से युद्ध करगिल ब्लॉग ना या गता मुश्को है या संकु या गता इचू पंगबर चोसला हर जगह रंगदुम जना गता हर जगह गए टीम अलोंग विद वैक्सीन खुते ऑलरेडी स्टेशन के लेफ्ट सर तीन ले कैसे
1: बिल्कुल जो छाना दू 21 दिसंबर ला अदिति जगह तक
2: कसले अदिति जगह ता पूरा कोई कतन चते के हमने 22 दिसंबर ने 23 दिसंबर ला गाई टीम ने जी गोगो योचिन ताकि वेरीफाई चो जले थोत दो में दुख जते लूस्ते यो ना करो दोले दे जा तक जस कसले
1: मसे जो
2: गास देना युवा तेना इन गाई हेल्थ डिपार्टमेंट ने तरफ ना युवा तेना इनकी बिंचेस पोलियो फ्रून ला पोलियो वैक्सीन तंग जस खुदा न खास्ता ता ठू मल छुंग चगी दु चोक स्केस कन जी दु नेन न चांग मिचा खोन ल क्यों ना मायन न का तो 22 ला ना ता 23 ला गाय टीम योंग चिन नि जी के गो गो का बस ते का ठून ला वैक्सीन तंग तु जस मेहरबानी बाकी ने ज्वाइन ने तना दुआ चो जत जस की ना ता पोलियो फ्री लुशेस ला यांग चांग पोलियो मरीज ना ता मि टॉप जस थैंक यू
0: Дарентес, Рделукси, Хагуи, Программ Палаян Четпин. Ди Программ Пенхаглен Канпуин Мин, Доктор Мухаммад Джалил. Медиа Мой Вдон Айпем, Чаналика Дюакашвани, Каргилин Каста, Тусо Трук Сахпар, Сангма, Стот Каригентес, Нянмасад.
3: Бисмиллахир рахманир рахим.

Nazgaz gagelir çe Fokhojar sa ma khuda

0: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहां पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहां आया हूं, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे

0: मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिस्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया। सेना प्रमुख ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। पदभार ग्रहण करने के बाद सेना प्रमुख का पुंछ के अग्रिम क्षेत्रों का ये पहला दौरा है। सेना प्रमुख ने नगरोटा स्थित व्हाइट नाइट कोर मुख्यालय में वरिष्ठ कमांडरों से जम्मू क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों की जानकारी ली। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक एलपीजी टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा है कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले साल यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। ईरान ने अमरीका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमरीकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमरीकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमरीका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अमरीकी हवाई हमलों से 2 दिन में 14 लोग मारे गए हैं और 78 घायल हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मॉनसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today outlined a powerful roadmap for a future-ready and developed India driven by the mantra, Grow More, Achieve More. Addressing the Indian diaspora in Melbourne, Mr. Modi highlighted India's economic and technological progress.

0: फूल वाला, केटिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई।
1: बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे।
0: अरे नहीं भाई, बैंक संभाल लेगा।
1: कैसे?
0: मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पर रजिस्टर किया है, बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की तफसीलात दे दी। बैंक जांच करेगा, तस्दीक करेगा, तफसीलात मुख्तलिफ हुई तो क्लियरेंस नहीं।
1: अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला।
0: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।
0: बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ये।

0: और मेंटली चेंजेस भी हो मत, जिसके बारे में हम अपने पेरेंट्स टीचर्स के बारे में खुल के, टीचर्स को इसको डिस्कस नहीं कर सकते खुल के, क्योंकि अलग कल्चरल टेबून में, रिलीजियस टेबून, जैसे कि मतलब आप अपने पेरेंट्स से मेंस्ट्रुएशन के बारे में या नॉक्टर्नल इमिशन के बारे में खुल के स्पेरा जरूर में हम मत पे
1: डीएच पे हाँ जो
0: ओ दी एच पे
1: मार्शेस
0: दी फिला दी प्रोग्राम पो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टूलिंग में अति सरकार तरफ से, और हर डिस्ट्रिक्ट ना मतलब अति डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को दी क्लिनिक पो, और हर ब्लॉक की सी एस सी साइक को गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर साइक का, और गोल्डन में फ्रेंडली क्लिनिक जरखन चाहिए, एडोलिसन फ्रेंडली क्लिनिक जहाँ पर 10 से 19 साल पर 100 से 100 प्रॉब्लम शेयर बच्चे काउंसलर नियम्बो और उनसे सपोर्ट लेना है, दे फिलहाल मजे एडोलिसन एजुकेशन प्रोग्राम चिखवा दी फिलता से
1: बख्शे जो है ना जो तो खुर्ता मशीन सु गाव्यांग अति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तंचन गुम्बा का तो लेने तीन सु गाव्यांग अति 10 से 19 साल सुख पयोत खाने दे फ्रूनला गान ला दी एज पे गुस पेरे गिनना सुना सुना जरब मियां चे गोतना दोन दोनी बार यंग फ्रूनला हगोतां से दी एडोलसन एजुकेशन खुर्ता पे जरूरत सुख छा ना यहाँ देखा ना आता दुख जो फ्रेंडली हेल्थ सर्विस इन चिक दी फ्रेंडली हेल्थ सर्विस पो चीन दे बरंग अति खुर्तांस ना बखनुल्ला फिस पो बसे मुलना
0: दसन अरे जजदे पेरेंट्स और टीचर्स सगा जर बामियान मजरे शहर बा कंप्लीट शहर बामियान मजरे दी फिलंग आती हॉस्पिटल का सी एस सी साइक का क्लिनिक चिफेस हो दा
1: बख्शीश
0: एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक जरबत दसन अरे संगा टीच दी फ्रेंडली हेल्थ सर्विस चा जरें जरे फ्रेंडली हेल्थ सर्विस दी फिला जरें कि 10 से 19 साल पा बोमो बसा छस मसास पा जिक्स मजिक्स पा दी क्लिनिक पे कयों से इंफॉर्मेशन लिंचा चौंग प्रॉब्लम छना जरचा, और दूसरा फ्रेंडली मतलब दी क्लिनिक पे योत्खन काउंसलर सर्विस खुआ जश बचमिन ची प्रॉब्लम ची उतना खुआ जश मन बचमिन प्रॉब्लम पो खुआ सपोर्ट बचिन, और जो शेयर हुआ है काउंसलर और क्लाइंट के बीच में या एडोलेसेंट एफटी बीच में जो भी शेयर हुआ है वो सब सीक्रेट होगा उनके इजाजत के बगैर, यहाँ 100 शेयर बचमिन काउंसलर ना एडोलेसेंट पर सबसे इम्पोर्टेंट इनमें, जिससे हमें
1: बख्शीश
0: उनको सॉल्यूशन नहीं देना है, जैसे ना अच्छे खुआ सजेशन ताचिन सॉल्यूशन ताना खुआ डिसीजन तामचोसों दे दी
1: बख्शीश
0: फिलहाल मन सीरियस केस उन्ना अच्छे रेफरल हम बात अच्छे गा डॉक्टर का और गोशा उतना मतलब यंग एडोलेसेंट चो 10 से 19 साल पपरी ख्वा गहने के हचा उतना या बुमे गहने के उतना ख्वा गहने ताचिन सेक्रेटरी डॉक्टर के हचा उतना या सीरियस केस उतना ख्वा सेक्रेटरी का रेफर बचिन
1: बख्शीश
0: पेडियाट्रिक डॉक्टर चो उतना पेडियाट्रिक डॉक्टर का रेफर बचिन या स्किन डॉक्टर चो उतना स्किन ची का रेफर बचिन दा सना है
1: बख्शीस छा ना दी फ्रेंडली हेल्थ सर्विस पे क्लिनिक चिका छात्र सुपर यानी क्लिनिक चिक चोक शिक फैस जाप सोते हैं छा ना दी क्लिनिक पो अति करगुला यानी चाज बना एज ए हेल्थ काउंसलर अति करगुला यो तमित दी तो हेल्थ क्लिनिक चिक यानी फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक चिक
0: ओ यो पंगाती डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल खोरी का ग्राउंड फ्लोर है एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक जरें जहां यंता इंफॉर्मेशन लेन मरगोस ना 10 से 19 साल पा सजेशन लेन मरगोस ना या अंगती जिंदगी दो 10 से 19 साल फैला फिर ची प्रॉब्लम छाने जो हम दूसरों से शेयर नहीं कर पाते हैं डी एच पे अंगता छस पद पर जो नो जर बमियान मत अंगता डी एच पे या शेयर बा मियान मत दी फिला दी एडोलेसेंट हेल्थ क्लिनिक पे कहों से न बचा कौन सा ची उतना अंगती अंति दो शेयर बचे कौन सा लड़ने वो बाकी अंगती ब्लॉक से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से कहा
1: बख्शी जू छाना ये रिस्क मता फ्रेंडली हेल्थ सर्विस ही बारे आंजे सियां दियां जो तो क्लिनिक चिगं फेस यो दिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल ला गावंग अति एडोलसन नी उमर पिकोत खानी फ्रून लगा लगा चुक्स इंफॉर्मेशन चिक रगोशा सिन ना तंग मजेरे छने यंग देना चुक्स ला दी एडोलसन हेल्थ फिला ओदे क्लिनिक चुक्स पुनिका ब्लॉक लेवल इको ओदे डिस्ट्रिक्ट लेवल इको गचुक्स जेंटिस फ्रून ला हगोरिक तंग मत
0: दी एडोलेसेंट दी क्लिनिक में जरूरत जो एडोलेसेंट हेल्थ क्लिनिक की जरूरत पे एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक की जरूरत AFHC जरूरत पे दी स्ट्रेटेजी दी सोशल जो है 10 से 19 साल पे सेहत 6 मेन टॉपिक हों चिन माया खुए हेल्थ बारे में जिनके बारे में आती 10 से 19 साल पे नौजवान सगा अवेयरनेस बमन जरूरी है खुंगा इन्फॉर्मेशन तमा वाजिब है मैं मतलब दी एज पे का 10 से 19 साल एज पे का दी टॉपिक ऑन दी डिस्कशन उनको बा जरूरी है दी इन्फॉर्मेशन उनको तंग जरूरी है जो है सबसे पहला दे टॉपिक चीजें है ना न्यूट्रिशन है जचस थूचस दसन जंक फूड खिमो से दे प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट मिनरल उत्पादन चिंग में नजामित दी फिलहाल खुआ दी न्यूट्रिशन के बारे में खुआ अता इन्फॉर्मेशन बे जरूरी इंसान
1: ता दसन थों दे कि न्यूट्रिशन दी जब थों पो गति फिर से संदा आलता ना कतो यंग ना मेजन चिंग ता कोल बा थों मिनुक फिस्ते जान पो छना दी न्यूट्रिशन ही दिन
0: ओ फिस्ते जानते हैं जैसे कि जंक फूड

0: जो पिज़्ज़ा, कुरकुरे, लेज, उनमें कुछ है ही नहीं, जस्ट तले हुए चीज़ होते हैं, ज़्यादा तेल और उसमें वो जो फन में चीज मन हो चमिन, न्यूट्रंट्स हो चमिन, जिसमें जैसे विटामिन, प्रोटीन, वो अति वह दिन स्मच्छन में एडोलेसेंट एज के ज़्यादा सचिन में दिन
1: नशिस
0: कंजप्शन ज़्यादा बचिन।
1: ठीक दिस को लेंटे सगो तमोच भाप सुनला
0: और टॉपिक चिचक दिन मैं चिचक इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ बारे में बात कौन इन्फॉर्म बच्चा प्यूबर्टी बाले का तुम मना दी एच पी का बॉडी में चेंज हो जाता है बहुत मिनिस्ट्रेशन हो चिन बोमोन है
1: नशिस
0: बसान में नॉक्टर्नल इमिशन छचिन और इस एज में सबसे ज्यादा आता है एच आई वी एड्स बारे में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दून सारे बारे में जरूर क्वेश्चन माया
1: नशिस
0: जूना तीसरा टॉपिक पों आता मेंटल हेल्थ बारे में एग्जाम स्ट्रेस छ दे दी एच पी का दी एच पी का आती फैमिली आता आमा सगिस एक्सपेक्टेशन ज्यादा जगह का
1: बस
0: बसान
1: एग्जाम
0: बोमोन
1: में
0: सगे
1: मांग
0: का
1: यंग अता लक्सो लक्सो यों दे जो
0: ओ ता दी एग्जाम्पल चिकन मैं दी एज पे का
1: बख्शिस
0: ज्यादा था 10-19 साल पे का ज्यादा एग्जाम स्ट्रेस हो चुके हैं
1: बख्शिस
0: और गति फैमिली फ्रेंड्स या गति पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशन हो कि नी बोमो बस या स्कूल में टॉप छाड़ गुशिन खुन का प्रेशर था जिसकी वजह से स्ट्रेस हो खुआ काउंसिलिंग बार गुशिन मैं सुन से शिका बस्तुन बना स्ट्रेस हो चुन जैसे चाइल्ड मैरिज है ज्यादातर 10-19 साल पे चाइल्ड मैरिज है ना जैसे ना खुआ खामे प्रॉब्लम या ते खुनते हेल्थ बारे में प्रॉब्लम दिन सा स्ट्रेस हो चुन मैं स्ट्रेस एग्जाम की वजह से भी हो सकते हैं फ्रेंड्स की वजह से खुनती पर्सनल रिलेशनशिप फ्रेंडशिप की वजह से भी स्ट्रेस
1: सोसाइटी
0: हो
1: अंश
0: सकते हैं
1: दिया
0: सोसाइटी में चाइल्ड मैरिज हुआ तो आ गया और किसी का गलती से मतलब चाइल्ड मैरिज सुनसा वास्तव चनाखों का मेंटली बहुत स्ट्रेस हो चुन इसलिए दी क्लिनिक फैशन में ताकि उनको काउंसलिंग हो जाए वहाँ पर अच्छी तरह जो ना सबस्टेंस मिस यूज दरखन चाह बचन खुश चौथा टॉपिक सबस्टेंस मिस यूज दरखन जो गलत चीज़ सीखें इस्तेमाल बा जैसे कि स्मोकिंग सबेत ड्रग्स में मल सबेत कोकेन मरिजुआना या अल्कोहल थो मल सबेत दिन सा 11-19 साल पो डिसोसिएशन में क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा लेने का उनका ये होता है क्यूरियसिटी हो चिन मंगाती फ्रून है 10-19 साल
1: नक्शस
0: पे कि नया चीज़ सीख रहे हो इसीलिए वो लोग गलत चीज़ का शिकार हो जाते हैं स्मोकिंग बा नेगेटिव फ्रेंड सर्कल एंड लदन मना गलत चीज़ सख यूज बे चांस इन मैं सिगरेट थूंगा गलत लस बात जरबा जिससे खंगमा पा टीचर ला जरबा इंचमिन मैं जैसे 10-19 साल पर फ्रू चीज़ अगर का तो वो सिगरेट छोड़ना भी चाहते हैं या गलत चीज़ छोड़ना भी चाहते हैं तो उनके
1: खाओ पल्ले
0: पेरेंट्स
1: सच्चे में
0: जरबा
1: ना
0: इंचमिन
1: मैं
0: हो
1: पता हूँ जमीन खाओ पल्ले की खुद
0: यूज बेटर
1: स्क्रिटिक
0: अगर वो खुद अपने हिसाब से अवेयरनेस हो से खुआ नज दुफा तो हल असम से काउंसिलिंग चिलेने लिन तुक समना दि चोस दि एडोलेसेंट
1: क्लिनिक पे
0: फ्रेंडली
1: कर
0: हेल्थ क्लिनिक पेंदि चोस टॉपिक ने कुखों मदद बचन में
1: नक्शिस
0: जो टोटली सेफ रहेंगे खुद ही कहूँ सो हल जरे खुन फ्रेंड्स फैमिली सो जर चमन किसी को वो शेयर नहीं होगा सिक्रेट लुशन में थोड़ा पूरा
1: नक्शिस समझी
0: और चौथा इन मजू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पांचवा टॉपिक पे चौथा नहीं आता जस्ट सबस्टेंस मिसयूज का पांचवा टॉपिक पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि दक्षिण आते सोशल मीडिया ज्यादा यूज बदे स्नैपचैट इंस्टाग्राम का तमाम आती 10-19 साल पर फ्रॉम सब बाहर ला जंक फूड जा छे पिज्जा जा छे मोमोज जा छे लेज जा छे जिससे बहुत कस्म जर्मन हुआ पर जिन लगा आते जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे ओबिसिटी हुआ 10-19 साल पर ज्यादा मोटापा होते जिन नजर चिन हार्ट डिजीज हो डी एच पी का हेल्दी फूड माजाना जरमो सा डी एच पी का शुरू है चिन मैं 10-19 साल पर आती हिंदुस्तान पॉपुलेशन पर टोटल 20% छात दस
1: नक्शिस
0: टू उन्नीस साल इसलिए
1: जर्मो देने
0: अगर
1: का ना शुरू छाड़
0: ओ
1: चुका
0: 10-19 साल पर दसन हेल्दी लुसना एक हेल्दी इंडिया बन जाएगा यंग वे फिलअप फ्यूचर में
1: हेल्दी फैमिली कहाँ छते हैं
0: और
1: जो
0: हेल्दी फैमिली और एडोलसन हेल्दी लुस पर गोज दे एडोलसन हेल्दी लिस्ट ना खून खुनता एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा और अपनी सेहत भी एक्टिव माइंड रहेंगे दिन सगन में जो है बाकी छठा टॉपिक पर आती है वायलेंस एंड इंजरी डी एच पी का ड्रग यूज बना या वायलेंस बचिन माया जिंशा ना नशे में गलत काम भी छचिन माया इसके वजह से इंजरी भी छे चाजिन
1: नक्शिस
0: पुलिस केस भी छे चाजिन डेथ वेथ ये सब छे चाजिन इसलिए उनको पहले से हम अगर 10-19 साल पर पहला ना इन्फॉर्म बना दी अवेयरनेस प्रोग्राम पे कदी सोशियत जरना खून पहला ना अवेयर सोच नदी सोलह बच्चा में दासन चौक मिजर बताना थी 10-12 चौक पास छना तस बाइक चिखोस्तान जरे जिस पे वो इंस्टा पे रील था में फिला का समस्या टाइम था जिससे बहुत इंजरीज हो सकते हैं सो दी फिला खुआ वायलेंस एंड इंजरीज अरे दी टॉपिक चाहे मत पा दी फिला खुआ दी का अवेयरनेस पास से जाचा
1: यानखनुल्ला फेसपा बसे मोल्स की गा चुक्स ला दी क्लिनिक पे गा गचु खागो का तुतांग मजर या गा फ्रुची गा रडो शुखन चला उनका तो अगर को लेने उतना का तो या खुस उदो चुक्स चीशी खुस लेने उतांग गा खोई करना बुत इन मेत या खुस समित की उदे चीज पो यां लेंचस में जर ना छन
0: ओ
1: दी
0: छुटकारी बॉक्स हमने को खड़ा पेरेंट्स लजर बजिक से टीचर्स लजर बजिक
1: या
0: से
1: फ्रेंड्स को
0: इसलिए
1: रा
0: हाँ
1: जर बखवा उसमें छोड़ना का तो
0: तो
1: खोई
0: एक
1: उनसे
0: तो
1: दी
0: सही
1: क्लिनिक पे
0: शेयर
1: का
0: बच्चे
1: शेयर बाय एंचस इन
0: जो
1: सुकियांग
0: टोटली सीक्रेट है सेफ है जिसके बारे में हमको डिस्कस नहीं होगा काउंसलर पना एडोलेसेंट के बीच में ही रहेगा
1: बख्शिश छाना का तो दक्षिण से वक्त पे हम दूसरे वक्त

0: ngata ga phrigin na ga to stress jere ya depression jere odo chok nar chok chang song song no deha jo chana di adolescent age pika ya ngate jere yespidi leswe ka dip shun la rangish go ya rangil dat pau ga chok sla gyala base jak pa yan chasen
1: दी एश पे का माइंड ना बॉडी हेल्दी जा पे फैला। सबसे पहला दी स्क्रीन टाइम को कम बार उसी में जो स्क्रीन टाइम मतलब जैसे कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ बे मोबाइल का दक्षण तो कितने इंस्टा से इंस्टा रील्स आप स्क्रॉल बे फेसबुक इंस्टा यूट्यूब शॉर्ट्स आप स्क्रॉल बे तो कितने टीवी कम सचा स्क्रीन टाइम पर मोबाइल टाइम पर कम बना। और दूसरा जो एक्सरसाइज बार क्वेश्चन स्पोर्ट्स साइकिलिंग दून सक बना खुद माइंड दिन नसा हेल्दी लोशन ना बॉडी सा हेल्दी लोशन।
0: नक्शिस
1: और कम से कम 8 to 10 घंटे नीत तमर रोशन। और सबसे ज़्यादा डाइट दक्षण अत्य न्यूट्रिशन जैसे न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट ज़्यादा रोशन। बैलेंस डाइट मतलब यानते नाम संग नियन मिसर पो यानते डिनर हैं ब्रेकफास्ट हैं लंच हैं वेजिटेबल ची ज़रूर
0: लेन
1: जाक्चा
0: रोशन्स पा
1: फ्रूट ची ज़रूर जाक्चा। और यदि ब्रेकफास्ट डिनर लंच में कोई भी स्किप नहीं करना है जिससे स्किप बना आपको बहुत नुकसान होगा जिससे आपको बैलेंस डाइट दिया
0: रगोल दन में
1: और
0: वक्त
1: गोल्डन में
0: पुकाना
1: दे
0: वक्त
1: वो
0: पुकाना
1: स्पाइन
0: दिया नंदे
1: गोशन
0: जो
1: दे और
0: नक्शिस
1: उनको ज्यादा एनर्जी और ये भी चाहिए मेडिटेशन एंड हॉबीज बार गोशन हॉबी यदि हॉबी छीनना जैसे कि स्पोर्ट्स क्रिकेट दूर से यार शो करना या डांस से शो करना दून साथ ज्वाइन बचा इंस्टाग्राम ने यूट्यूब शॉर्ट स्क्रीन बिंदु से हेल्दी मन लुशन में नैनती माइंड एंड देन ज्यादा मोबाइल के दुगना एक्सरसाइज बचा रहा हॉबी फॉलो बचा मेडिटेशन बचा दून सारे के हेल्दी लुशन में जो एडोलसन देश पे का
0: Parce que je vois les ngati ngian la Facebook va se mos ki gazux la rang rang is gold dat pau d'accent se va spam phone unikani ya screen time jere resis odo ni kana thagrin shak par gosha sen jazir bana di gold dan mi vaqt bo khurang dena win di vaqt pe ya res zan bo yala ba se zana ya nit bo yala ba se tangna ya hobbies ya meditation ya resis ton ka tor yala ba se jakna rang is gonal dat pau yala ba se lushes in jere chana yang dia ngata nga ngati mu chan rang is rang phiste ngata ta game jere ya ga chok slashik bain ut nakato cha jama da khsan swaks pa na man mi thong mat ngata cham chi phru yot nakato khos phone khu cha sen ya nangus la nang nangus la tv ten duk cha jin chana ga to do ni sang khu e er deluxe pika zokhar ta cha jin chana ga chok sla rang is gab mo bu se gin na rang is phiste yang spar se cha spyang rang engage par go cha jin
1: सबसे पहला बसा ना अति आम सोसाइटी या अति पेरेंट्स संग बसा बाहर फैमिली संग बसा बाहर ला ज्यादा यहाँ स्पष्ट रहता है। सबसे
0: नक्शिस
1: पहला आता जी सेटोट्रैप ब्रेक बार क्वेश्चन की बोमो सिर्फ ना दुखचा जंस कुलचा दी ख्याल पर हटाई बार क्वेश्चन में बोमो साइंटिस्ट विल दान मिचाज इन क्रिकेटर विल दान मिचाज इन फुटबॉलर विल दान मिचाज इन एथलेटिक्स सब हो सकता है। दर्शन
0: जी
1: गति मैन बोमो सब ना लाज बच पदे
0: हम
1: उनको आउटडोर एक्टिविटीज कैसे करवाएं। सबसे पहले गति आता आमा सगा बोमो दुशस पर क्वेश्चन मैं बोमो हर स्पोर्ट्स यहाँ पर से मदद बार क्वेश्चन खुआ अगर कहते गति यूल दर्शन टूर्नामेंट छत पर थोस दुख
0: यूल यूल लचित
1: को
0: देहर
1: आर्चरी टूर्नामेंट छा क्रिकेट टूर्नामेंट छा बोमो से टूर्नामेंट छा फैर थोड़ा मन थो दे
0: मतों
1: ज्यादा बोमो सगा बसा सगा थो दे फिर लगाता सुकून लय ना बोमो सगा ज्यादा सपोर्ट्स एनकरेज बार क्वेश्चन बोमो सगा ना अल्लाह सगबा यन अगर का तो बोमो सगा ना अल्लाह बा यन मन्ना बाहर
0: फिस्ता
1: लदी
0: यंग्सपर्स
1: फिस्ता
0: आयन
1: यस
0: चेन हाँ
1: यहाँ स्पष्ट है एंचिन दे दस ओंग आते बोमो सगा एंगेज बना एंचिन मैं
0: थने यंग देना न मोंग आता आदि सुख शितु की बुचान जरे हाँ जो तब बोमोनी नाते जख्म स्पर्या तंग स्पर्या बुचान चाम चीन नाते तब बोमो नंग अल्लाह बार गोशस इन या बोमुस नंग इलास में ने बोमा मेन जर्स चस बो चुक्सला बुचा गा चुक्स श्रंटे चीशी खुए का फुक नंग सोसाइटी अंगा चुक्स चीशी खुए का नंग छा यानी बुचा माने मिंगुआ जरे जिंदु दे या मिंगुआ और गोशा सिं जरे अतः जे आंजे बाद दे बुचे कोला का छाने का तुलों सं बुचे सं मिंगु चा जरे जर बच्चा दी एडोल्सन एज पे या एडोल्सन दी उम्र पे 10 to 19 साल उम्र पे दी फ्रून लाख इस पर बस नाती मीमांग सुन लेरे जहाँ जर ना कि बुछानी हिसाब ना गचुक शेड्यूल बार गुशा सिन या बुछान ला गचुक ला काउंसलिंग बार गुशा सिन आता माइन या काउंसलर इन ना
1: दे एडोलेसेंट एज पे 10 to 19 साल पे ज्यादा तरह आते पहला ना तो बोमई का डिस्कस बस कि कौन खामा जा परोशन चौक बाले तो मैंने यहाँ पर मिर्चल जरे नंगोज ले जा पद्दे दैसा बसान ला चौक आता खो जिम्मेदारी उम्मीद ने ला शाना बसा दी सो शचा दी हालात पिछात ऐसा प्रॉब्लम आता है बस एक बस मुँह तजर्बत दें आती सेटें हमेशा दस जरबत दस जरबा ना आता दर्शन दी एज पे का अगर खतुन इमोशन पृथिक बस एक्सप्रेस छचा मछाना खुद ज्यादा स्ट्रेस छचिन मैं
0: बख्शिश
1: मुचास पर कमजोरी निशानी मिन माँ इंसान

0: स्थानीय यंत्र में यंबो दुखन यंति प्रोपा ऑल इंडिया रेडियो करगिल
1: मीडिया में वो दोनों एफएम चैनल का दिया आकाशवाणी करगिलन वक्त पदर तो सो तोर्दुन संसुक कस्ता प्रोग्राम इंतेस नियन मज़ात अच्छे नमोनी पिया प्रोग्राम असिर तंगन पेन जहरा बानू मीर

سلاتیم فرش دے بائی چمن سنگ رشک معوائی.

سفندر سب تھو نیرندہ ویسے دربار ایمان سفندر

0: Miremewu dona FM Chanlika Dua Akashvani Kargilin, Wokspodare Khabarunni Thosong Sukasta, Akashvani Srinagar Navrti Khabarunna Tapsira Rilebir Lelendir Nanchibasat.
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शेख यासीन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। हिंद ऑस्ट्रेलिया सरबरा इजलास में वजीर अजम नरेंद्र मोदी की शिरकत। इलाकाई इस्तेहकाम को मजबूत बनाने पर दोनों ममालिक का इतफाक। मरकजी वजीर दाखला ने जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की सरहदी रियासतों और यूटीज के SSPs के साथ मुनक्कदा कॉन्फ्रेंस में लिया सलामती सूरत हाल का तफसीली जायजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पांच चौक में यात्री निवास में इंतजाम का लिया जायजा। यात्रियों के रूहानी सफर और जम्मू कश्मीर में उनके कयाम को यादगार बनाने पर दिया जोर। और जम्मू कश्मीर में मयार पर मबनी सियाहत को दिया जा रहा है फरोग। पायदार सियाहत से मुतल्लिक कन्क्लेव से वजीर आला का खिताब। पेश है खबरों की तफसील। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की राह पर गामजन है। मुल्क की उमंगों को जाहिर करते हुए वजीर अजम ने कहा कि आज का भारत एक ऐसी कौम है जो कि ज्यादा तरक्की और ज्यादा हुसूल याबियों में यकीन रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में भारतीय बरादरी के एक जलसे से खिताब करते हुए गुजश्ता 12 बरस में आज के अपने तीसरे दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया में उनकी हैट्रिक है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के तालुकात में मजबूती के एतबार से नई बुलंदियों की अक्कास है। इस तकरीब से ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथनी एल्बनीज ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि इस तकरीब में लोगों की शिरकत हिंद ऑस्ट्रेलिया शराकतदारी की गमाज है। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम में दोनों ममालिक के लोगों की पुरजोश शिरकत आपसी ताल्लुकात में मजीद लचक लाने की तहरीक देती है। इससे पहले वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथनी एल्बनीज से तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया इजलास में शिरकत की। इजलास के इख्तिताम पर दोनों लीडरों ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। दोनों लीडरों ने इलाकाई इस्तेहकाम तवानाई के तहफुज और टेक्नोलॉजी की इख्तराइयत को फरोग देने के लिए इतफाक किया। हिंद बहरुल काहिल में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए दोनों लीडरों ने दिफा और सलामती शराकत दारी के अलावा सालाना बुनियादों पर वज़राए दिफा की मीटिंग पर इत्तेफाक किया। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की शराकत दारी एक इस्लाहती और हाईटेक दौर में दाखिल हुई है।
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
1: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज कौमी राजधानी नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर समेत दीगर सरहदी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के सभी SSPs के साथ एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, जिस दौरान उन्होंने इन खित्तों की मजमूई सिक्योरिटी सूरतहाल का तफसीली जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के अलावा इस आला सतह की मीटिंग में पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल और शुमाल मशरकी रियासतों के SSPs ने हिस्सा लिया, जबकि इस मीटिंग में उमूर दाखला की वजारत से जुड़े सीनियर ओहदेदार

0: भी मौजूद थे। मीटिंग में मुल्क की सरहदी सलामती के फ्रेमवर्क को मजबूत करने और हसास सरहदी खेतों की मौजूदा सलामती सूरत हाल नीज इसमें बेहतरी लाने के इम्कान पर तवज्जो मरकूज रही। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अफसरों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि भगवान शिव के सभी भक्तों की मुनासिब खिदमत हो सके। पंथा चौक श्रीनगर में वाका यात्री निवास का दौरा करने के मौके पर मनोज सिन्हा ने कहा कि किसी भी यात्री को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कैंप में यात्रियों के लिए दस्तियाब सहूलियात का बरसर मौका जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में यात्रियों का कयाम आरामदेह और यादगार हो। मनोज सिन्हा ने कहा कि गुज़श्ता एक हफ्ते के आदादोशुमार इस बात की अक्कासी करते हैं कि इस साल श्रद्धालुओं की तादाद गुज़श्ता बरस के मुकाबले में काफी ज्यादा रहेगी। उन्होंने कहा कि यह अलामत हमारी रूहानी सकाफत के लिए ही एक नेक शगुन नहीं है, बल्कि यह जम्मू कश्मीर में सियाहत के लिए एक खुशगवार निशानी है, जिसकी बदौलत यहां की मकामी मईशत पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलोबी से जारी है और अब तक लगभग 1,50,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिव लिंगम के दर्शन किए हैं। आज शाम तक मजीद 27,378 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। दरियस्ता भगवती नगर जम्मू के बेस कैंप से आज सुबह 8,150 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और जत्था रवाना होकर वादी पहुंच गया है। इनमें से 3,445 यात्री बालतल जबकि 4,705 यात्री पहलगाम के रास्ते यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान पंचतरणी पहलगाम की टेंट यूनियन ने कहा है कि उसने यात्रियों को अपनी तरफ से मुफ्त टेंट की सहूलत दस्तियाब रखी है। हमारे नुमाइंदे तसदुक रशीद ने खबर दी है कि यूनियन ने जिला इंतजामिया के तआवुन से कई यात्रियों को अब तक मुफ्त टेंट की सहूलत मुहैया की है। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मकदार के बजाय मयार पर मबनी सियाहत को फरोग दिया जा रहा है ताकि पायदार सियाती और मुआशी तरक्की यकीनी बनाया जा सके। एसकेआईसीसी श्रीनगर में पायदार सियाहत से मुतल्लिक एक कन्क्लेव से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के कुदरती सियाती मकामात के तहफ्फुज़ के लिए जामे मनसूबाबंदी और मकामी आबादी की फाल शिरकत दारी नागुजीर है। वज़ीर-ए-आला ने तमाम सियाहती मकामात पर बुनियादी और जरूरी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सियाहती मकामात के मास्टर प्लान माहौलियात की देरपाइयत के साथ हम आहंग होने चाहिए। उन्होंने माहौलियाती एतबार से हसास मकामात पर सयाहों की तादाद मुंजबित करने पर भी जोर दिया। इस मौके पर एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह भी मौजूद थे। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
1: जब तक हम सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक कंटिन्यूटी नहीं रहेगी सो फार एज टूरिज्म अराइवल्स आर कंसर्न। हमें जो है टूरिज्म डेस्टिनेशंस हमारी जो हैं, उनको जाजबी नजर बनाना है, उनको प्लानिंग की जरूरत है। जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने आज कहा कि जो हमारी प्रीमियर डेस्टिनेशन है गुलमर्ग पहलगाम सोनमर्ग यहाँ और पट्टी टॉप इन जम्मू, उनमें भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इसके साथ साथ जो हमारे नए डेस्टिनेशन है बहुत डेस्टिनेशन हैं जो है अनएक्सप्लोर्ड है अभी, उनको एक सस्टेनेबल तरीके पर उनको डेवलप कर रहा है ताकि कंटिन्यूटी रहे हमारे टूरिज्म में। मास्टर प्लान की बहुत ही जरूरत है। मास्टर प्लान रोड मैप आपके पास बनेगा कि कैसे डेस्टिनेशन को हम उसको डेवलप करें।
0: वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए कई वफूद ने आज राबता दफ्तर श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की। वजीर आला ने वफूद के जायज मुतालबात को मरहलावार बुनियादों पर पूरा करने का यकीन दिलाया। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से AAY तबके के तालब इल्मों का फीस माफ करने के फैसले की अवामी सतह पर वसी पजीराई की जा रही है। लोगों का कहना है कि इस इकदाम से AAY से ताल्लुक रखने वाले पसमानदा तबके के तालब इल्मों के साथ साथ उनके वालदेन को काफी राहत मिलेगी। वाज़ेह है कि वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह ऐलान करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम 9वीं से 12वीं जमात तक और डिग्री कॉलेजों में तालीम हासिल कर रहे AAY तबके के तलबा का पूरा फीस माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तारीखी फैसले से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से किया गया एक और वादा पूरा हो गया है। खुराक शहरी रसदात और उमूरी सार्फीन के वजीर सतीश शर्मा ने

पंजाब सरकार के साथ आला सतह की सिलसिलावार मीटिंगों के दौरान जम्मू कश्मीर के कोठदारों के कई मसाइल हल करके अहम कामयाबी हासिल की है। मीटिंगों के तनाजुर में इस तजारत से वाबस्ता अफराद के तशवीशों की चाराजोई के लिए फौरी अहकाम जारी किए गए। वजीर मौसुफ ने पंजाब के अपने हम मनसब के अलावा वहां के चीफ सेक्रेटरी नीज साइंस और टेक्नोलॉजी और महकमा दीही तरक्की के सेक्रेटरियों के साथ भी मीटिंगें की। मीटिंग में लाइव स्टॉक की आसान तरसील यकीनी बनाने का मामला जेर गौर रहा। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। पापोर के एमएलए हसनैन मसूदी और सोपोर के एमएलए इरशाद रसूल कार ने आज श्रीनगर में ज़रात पंचायती राज और इमदाद बाहमी के वजीर जावेद अहमद डार से मुलाकात की। इस दौरान दोनों अरकान कानून साजिया ने अपने अपने असेंबली हलकों से जुड़े अवामी और तरक्याती नौयत के मामलात उठाए। सरकारी यकीन दहानियों से मुतलिक जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली की कमेटी की एक मीटिंग आज कमेटी के चेयरमैन अली मोहम्मद सागर की सदारत में मुनक़द हुई। मीटिंग के दौरान महकमे तामीरात आमा से मुतलिक सरकार की तरफ से कराई गई यकीन दहानियों पर अमल आवरी की अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मीटिंग में कमेटी के सभी अरकान मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जम्मू कश्मीर की असल ताकत और शनाख्त है। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अकलीती सेल के सूबे कश्मीर के एक इजलास की सदारत करते हुए डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी ने हमेशा अकलीतों को तामीर और तरक्की में शामिल रखा और बराबर की नुमाइंदगी दी है। यह इजलास अकलीती सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आजाद की निगरानी में मुनक्द हुआ। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और एमएलए लालचौक परदेसी ने पार्टी की मजबूती के लिए अवामी राबताकारी में तेजी और बेहतर तालमेल पर जोर दिया। वो पार्टी हेडक्वार्टर में हल्का इंतखाब लालचौक के पार्टी कारकुनों और अहदेदारों के इजलास से खिताब कर रहे थे। प्रदेश बीजेपी के सदर और राज्यसभा के मेंबर सत शर्मा ने आज पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में बीजेपी से वाबस्ता सीनियर लीडरों की एक मीटिंग की सदारत की। उन्होंने जम्मू कश्मीर की मौजूदा समाजी और सियासी सूरतहाल का जायजा लेने के बाद अवामी राबताकारी को तेज करने और लोगों के मफादात की हिफाजत के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। प्रदेश बीजेपी के तंजीमी उमूर के जनरल सेक्रेटरी ने आज करना में मुनक्कद करदा मीटिंगों के दौरान पार्टी की तंजीमी सरगर्मियों और बीजेपी को जमीनी सतह पर मजीद मजबूत करने की हिकमत अमलियों पर मुतलकीन के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। मीटिंग में प्रदेश बीजेपी के सेक्रेटरी मुदस्सर वानी और जिला सदर कपवाड़ा सईद रफीक शाह के अलावा करना हल्के के हल्का सदर इम्तियाज मीर भी मौजूद थे। अशोक कौल ने बाद में साधना टनल के मुजवजा मकाम का भी दौरा किया। बुलंदपाया वली हजरत सईद कमरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स कल यानी 10 जुलाई को मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में उनके आस्थान आलिया वाका शेरगढ़ी जहांगीर चौक श्रीनगर में नमाज जुमा दोपहर 2:30 बजे अदा की जाएगी। इस मौके पर उलमाए दीन औलिया इकराम की सीरत बयान करेंगे। महकमा इतलातो तालुकात आमा की डायरेक्टर श्रेया सिंगल की सदारत में आज एक ताजियती इजलास मुनक्कद हुआ, जिस दौरान महकमे के एक ऑफिसर मजीब अहमद के साथ यकजहती का इजहार किया गया, जिनके फर्जंद का इंतकाल हो गया है। सेंट्रल सिलिक बोर्ड की तरफ से एनआईएफटी कैंपस ओमपोरा बड़गाम में आज मेरा रेशम मेरा अभिमान के तहत एक तरबियती वर्कशॉप मुनक्कद किया गया। वर्कशॉप में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 60 से जायद अफसरान ने शिरकत की। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत कुलगाम पुलिस ने आज करीब 1 करोड़ रुपए मालियत के रिहायशी मकान को सर्वमोहर किया। पुलवामा पुलिस ने एनडीपीएस के तहत जब्त की गई मुनशियात की कुछ मिकदार को तलब किया और मुनशियात के खिलाफ कतन बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर कारबंद रहने का अजम दोहराया। बारामूला पुलिस ने यूएपीए के एक मामले की तहकीकत के सिलसिले में आज जिले के कई मकाम पर तलाशी की कार्रवाइयां अमल में लाई। गांधरबल पुलिस ने मादनियात की गैरकानूनी में इस्तेमाल होने वाली 2 गाड़ियों को जब्त किया है। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुनशियात मुखालिफ सरगर्मियां जारी हैं और यूटी को इस बिद्दत से पाक करने के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच की इक्तसादी जराइम से मुतलिक विंग ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कश्मीर के इश्तराक से आई

0: जीसी लासीपोरा पुलवामा में काफी मिकदार में नशीली अशिया को तबाह कर दिया। ये अशिया एएनटीएफ ने मुख्तलिफ ऑपरेशनों के दौरान जब्त की थी। कश्मीर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन के मेंबरान ने आज कोलगाम में एहतजाज किया। फेडरेशन के मेंबरान हाल या मौसमी सूरत हाल से मेवाबागात को हुए नुकसान की सरकार से भरपाई का मुतालबा कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के मुताबिक मुजाहिरीन ने फसल बीमा योजना को लागू करने और किसानों के कर्ज मुआफ करने का भी मुतालबा किया। मौसम महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.5 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: आज का तबसरा लेकर हम हाजिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया का कामयाब दौरा मुकम्मल करके अब दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न पहुंच गए हैं। जैसा कि हमने गुज़श्ता रोज़ के तबसरे में कहा कि इंडोनेशिया का दौरा सकाफती, दिफाई, मईशती, तालीमी और कई अहम शोबों में इश्तराक के लिए एक अहम संगमील साबित हुआ क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान एक दर्जन से जायद मफाहमती समझौतों पर दस्तखत हुए। इंडोनेशिया के दौरे की तरह इस दौरे का मकसद भी भारत और ऑस्ट्रेलिया जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाना है। आलमी सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नजर सप्लाई चेन की रुकावटों से निपटने और इंडो पैसिफिक की सलामती को बरकरार रखने, नीज तिजारत, दिफा, अहम मादनियात, साफ व शिफाफ तवानाई, टेक्नोलॉजी और अवाम के दरमियान बेहतर ताल्लुकात को फरोग देना है। अहम मादनियात और सप्लाई चेन की सलामती के तौर पर अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम, सेमीकंडक्टर, साफ तवानाई की टेक्नोलॉजी के लिए दरकार लिथियम, कोबाल्ट और दीगर अहम मादनियात के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। भारत अपनी बरकी जरूरियात, ट्रांसपोर्ट, काबिल तजदीद तवानाई और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक महफूज और देरपा सप्लाई का ख्वाहा है जो कि ऑस्ट्रेलिया पूरी कर सकता है। उम्मीद है इस दौरे के जरिए दोनों ममालिक इन शोबों में तवील मुद्दती फराहमी के तरीकेकार को और गहरा करेंगे। इसके अलावा साफ तवानाई और सिविल न्यूक्लियर टॉपिक्स शोबों में तआवुन इस दौरे के मरकजी मौजूदात में शामिल हैं। उम्मीद है कि दोनों ममालिक के दरमियान ग्रीन हाइड्रोजन, शमसी तवानाई और कम कार्बन वाली सनअतों के शोबों में तआवुन पर मजीद बातचीत होगी। सिविल न्यूक्लियाई तआवुन की मुनासिबत से एक अहम ऐलान सामने आया है जिसके मुताबिक भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जौहरी तवानाई पर एक अहम मुआहिदा तय किया है। जौहरी तवानाई पर यह मुआहिदा ऑस्ट्रेलिया से हिंदुस्तान को यूरेनियम की फराहमी में सहूलियात फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बनीज़ के साथ बातचीत के बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की सप्लाई को फ़ाल करने के लिए जौहरी तवानाई के इस कलीदी माहदे का ऐलान किया गया। यूरेनियम की सप्लाई भारत की तवानाई की जरूरियात पूरा करने और दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के एक खसूसी पहलू को उजागर करता है। समुन्द्री सलामती और दिफा की अगर बात करें तो हमें मालूम है कि इंडो पैसिफिक खत्ता दिफाई एतबार और स्ट्रेटजिकली बहुत ही अहमियत रखता है। यहाँ पर इस अमर का भी जिक्र करना जरूरी है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड के दो अहम ममालिक हैं जो कि अमेरिका और जापान के साथ मिलकर इस ग्रुप को इंडो पैसिफिक खत्ते में एक अहम दर्जा अदा करते हैं। बातचीत के दौरान समंदरी सिक्योरिटी, मुश्तरक फौजी मशकें, दिफाई सनतों में तआवुन, लॉजिस्टिक्स, साइबर सिक्योरिटी में मजीद तआवुन हो सकता है। इन्हीं ख्यालात की अकासी आज के दिन हमारे मुल्क और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी के तआवुन से मुतलिक मुश्तरक ऐलाननामा करता है जिसके तहत दोनों ममालिक के बीच दिफाई मफाहमत को नई सतह पर ले जाना, मुसल्ह अफवाज के दरमियान बाहमी इश्तराक, टेक्नोलॉजी और सनअतों के लिए सप्लाई चेन में और बेहतर तालमेल शामिल है। इक्तिसादी तआवुन और सरमायाकारी के एतबार से नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया का दौरा निहायत ही अहम है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुश्तरक तौर ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीईओ फोरम के इजलास की भी सदारत की और अहम कंपनियों के सरकर्दा ओहदेदारों से खिताब किया। उन्होंने इन ओहदेदारों पर जोर दिया कि दोनों ममालिक के बीच जामे इक्तिसादी तआवुन समझौता सीईसीए को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए। उन्होंने भारत में सरमायाकारी करने और भारत को ऑस्ट्रेलिया की तिजारती मंजिल बनाने पर भी जोर दिया। अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियन सुपर के चीफ एग्जीक्यूटिव पॉल श्रोलर की तरफ से भारत में 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की सरमायाकारी का खैर मकदम किया और कहा कि इस सरमायाकारी से भारत पर बैनुल अक्वामी कारोबारी इदारों के भरोसा, भारत की तरक्की और इक्तिसादी इस्लाहात के बारे में एक

0: खुशनुमांचलक पेश करता है। एक और प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों को भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक मजबूत पुल करार दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरक्की और खासकर तालीम और सेहत के शोबों में भारतीयों के रोल की तारीफ की। उन्होंने वहां रह रहे भारतीयों पर जोर दिया कि वो भारत की तरक्की में अपना रोल अदा करें और अपने मुल्क में सरमायाकारी करें। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत तआवुन, इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी खुशहाली में मदद मिलेगी। इस मौके पर अपनी तकरीर में ऑस्ट्रेलिया के वजीर अजम एंथनी एल्बनीज ने वजीर अजम हिंद को भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबेन एक पुल के तौर पर हवाला देते हुए दोनों जमहूरियतों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनके रोल को तस्लीम किया और सराहा। ऐसा महसूस हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का ये दौरा भी बहुत ही कामयाब साबित हो रहा है और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात नई सतह पर पहुंच रहे हैं। तबसरा खत्म हुआ, इजाजत दें, शब बखैर।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: हम आकाशवाणी करगिल से आपसे मुखातिब हैं, शब के 8 बजे चाहते हैं समय ना ये प्रोग्राम समाप्त करें फौजी भाइयों के लिए।

जय हिंद दोस्तों। फिल्मी नगमों पर मबनी फौजी भाइयों के प्रोग्राम लेकर इस वक्त आकाशवाणी करगिल से हम हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को हमारे ओर से खुलूस भर आदाब, और आज के इस प्रोग्राम में खैर मकदम पेश करते हैं। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में आप चंद पुराने तर्ज के फिल्मी नगमे समाप्त करेंगे।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

दोस्तों, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मेहता फिल्म से ये नगमा। गायक कलाकार है गुलाम अली। ये नगमा लिखा है मोहसिन नकवी ने और धुन तैयार की है गुलाम अली ने।

दोस्तों, प्रोग्राम का अगला गीत हमने इंतखाब किया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। ये नगमा फिल्म का नाम है यादों की बारात। ये नगमा कलमबंद किया है मजरूह ने और धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने।

0: फौजी भाई अपना मनपसंद प्रोग्राम इस वक्त आकाशवाणी करगिल से समाप्त कर रहे हैं। दोस्तों आपका ये प्रोग्राम मीडियम 1584 किलोहर्ट्ज़, मीडियम 684 किलोहर्ट्ज़, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और साथ ही साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं और आप सुनते रहिए प्रोग्राम आकाशवाणी करगिल।
1: कम वक्त में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक पर, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: पुलिस?
5: मिस सीमा
4: जी,
5: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
4: क्यों? लेकिन मैं
5: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
4: डिजिटल अरेस्ट?
5: 1,00,000 बच जाओगे।
4: इतने पैसे?
5: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
6: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए डर खौफ ना करें। पुलिस, बैंक, RBI वगैरह के नाम पर आने वाले साइबर मुजरिमों के फोन या वीडियो कॉल से होशियार रहें। उन्हें पैसे ना भेजें, बल्कि फौरन पुलिस में शिकायत करें।
7: हेलो मम्मा।
6: हाय।
8: RBI कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

वक्फे के बाद फौजी भाइयों को फिर से अपने प्रोग्राम में खैर मकदम पेश करते हैं। दोस्तों, आप सुनते रहिए प्रोग्राम आकाशवाणी करगिल।

उमराव जान अभी अपने इस फिल्म से नगमा सुना। गायक कलाकार थे आशा भोसले। ये नगमा लिखा था शहरियार ने और मौसीकी तरतीब दी थी खयाम ने। और आइए अब समाप्त करें सोतन फिल्म से नगमा। मेरी जिले आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

दोस्तों, इसी नगमे के साथ ही फौजी भाइयों के लिए हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी अख्ताम को पहुंचा। इस बीच हम आपसे इजाज़त तलब करना चाहेंगे। दोस्तों, आप जहां भी रहे हमेशा खुश रहिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।

0: समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर एचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर

0: शिप बैग मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
3: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2000

0: 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जाँच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विम्बल्डन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोच्यूक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास, अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले

0: US bases in Bahrain, Kuwait and Qatar, and in FIFA World Cup, France to face Morocco in the first quarterfinal at Boston in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल को यकीनी बनाने के सिलसिले में दिफा और सिक्योरिटी तआवुन के एक मुश्तरका ऐलानिए पर दस्तखत किए हैं। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की सप्लाई के लिए भी एक समझौता किया गया है। وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت زیادہ ترقی کرو زیادہ حصول یابی کرو کہ نظم العین سے متاثر ہو کر دنیا کی تین اعلی

0: स्टेडियम के अंदरून तहसीन और सताइश के बुलंद बांग नारे एक बुनियादी हकीकत की बाजगश थे कि भारत ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात उमूमी सफारतकारी से बहुत ज्यादा बुलंदी अख्तियार कर चुके हैं। वजीर आजम मोदी का ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत एक उमंगों भरे तरक्की याफ्ता भारत जो आलमगीर मैन्युफैक्चरिंग फतूहात से आगे बढ़कर इंतहाई अहम नौयत की इंसानियत नवाजी पर मबनी इकदाम का तसव्वुर है, ये साबित करता है कि एक मजबूत भारत पूरी इंसानियत की खिदमत अंजाम देता है। जैसा कि वजीर आजम अल्बानीज ने जोश व खरोश से भरपूर इस बिरादरी को कतई तौर पर खलीज को पाटने वाला लिविंग ब्रिज कहकर एजाज से नवाजा, जिससे ये बिल्कुल वाजह है कि भारतीय बिरादरी दोनों मुल्कों के इकतसादी इंजनों और कलीदी दिफाई राहदारियों को सरगर्म तौर पर ताउन दे रही है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: मेलबर्न में मीडिया से बातचीत करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ताल्लुकात हमजहत नौयत के और तेजी से पेशरफ्त कर रहे हैं। ब्रिक्स मुल्कों की ख्वातीन वुजरा की मीटिंग आज कोची में खत्म हो गई। ख्वातीन और बच्चों की नशोनुमा की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी ने इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ब्रिक्स ममालिक में ख्वातीन की नशोनुमा से मुतालिक कई मुश्तरका मसाइल पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये मुश्तरका मसाइल ब्रिक्स ख्वातीन वुजरा ट्रैक जैसे प्लेटफॉर्म की इंतहाई अहमियत को उजागर करते हैं ताकि मेम्बर मुल्कों के दरमियान मुजाकरात को आगे बढ़ाया जाए और तआवुन को मुस्तहकम किया जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स खवातीन उजरा की मीटिंग कोची में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें पहली मरतबा खवातीन उजरा के प्लेटफॉर्म की जानिब से एक मुश्तरका ऐलामिया मंजूर किया गया। ये ब्रिक्स रुकन ममालिक के दरमियान खवातीन की क्यादत में तरक्की के फरोग के लिए बाहमी ताउन को मजबूत बनाने की सिमत एक अहम संगे मील है। 6 जुलाई से शुरू हुई चार रोजा मीटिंग में ब्रिक्स खवातीन वर्किंग ग्रुप का इजलास और ब्रिक्स खवातीन उजरा का इजलास शामिल था। मीटिंग में भारत की जानिब से पेश किए गए ब्रिक्स डिजिटल खजीना और ब्रिक्स डिजिटल सलाहियत साजी के रहनुमा उसूलों की तजावीज का खैर मकदम किया गया। इसके अलावा इस अज़्म का इरादा किया गया कि खवातीन की क़यादत में तरक्की जामे और पायदार मुआशी व समाजी तरक्की के लिए एक अहम मुहर्रिक है। कोची से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
1: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि साफ मुतबादिल ईंधन और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की तरफ फौरन मुंतकिल होना सड़क ट्रांसपोर्ट शोबे में तब्दीली की एक अहम तरीन जरूरत है। गांधीनगर में 3 रोजा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट शो प्रवास का बाकायदा इफ्तिताह करते हुए वजीर मौसूफ ने रिवायती ईंधन पर इन्हिसार की बहुत ज्यादा इक्तसादी और माहौलियाती लागत को उजागर किया और सड़क ट्रांसपोर्टरों से जोर देकर कहा कि वो मुनासिब कीमत पर दस्तियाब मुतबादिल ईंधनों को पुरजोश तरीके से इख्तियार करें। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा है कि भारत की तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर 2047 तक काया पलट के लिए बुनियादी साइंसेस में मजबूत जड़ें कायम करना बहुत जरूरी है। भुवनेश्वर के नजदीक जटनी में साइंसी तालीम और तहकीक के कौमी इंस्टीट्यूट की 15वीं तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साइंसी एतबार से खुद किफालत मुल्क के मुस्तकबिल की तरक्की और आलमी क्यादत के लिए अहम तरीन उंसर होगी। तेजी से फैलती हुई तौलीद में मुआविन टेक्नोलॉजी ART शोबे में बेजाब्तगियों से मुतालिक बढ़ते हुए खदशात के पेश नजर ख्वातीन के कौमी कमीशन NCW ने आज एक आला सतह की माहिरीन की कमेटी तशकील दी है। ये कमेटी IVF क्लिनिक्स, तौलीद में मुआविन टेक्नोलॉजी ART मराकज और गैमेट बैंक से मुतालिक कवानीन और इंजिबाती फ्रेमवर्क का जामे जायजा लेगी। इस जायजे का बुनियादी मकसद ख्वातीन के तौलीदी हुकूक, वकार और तहफ्फुज को यकीनी बनाना है। दिल्ली हाईकोर्ट की साबिक जस्टिस आशा मेनन माहिरीन की इस कमेटी की सरबराही करेंगी। कमेटी रजामंदी, राजदारी और हयातियाती सुराग रसानी से मुतालिक मौजूदा हिफाजती इकदाम का भी जायजा लेगी। इसके अलावा कमेटी उन जाब्तों और तरीक़ाकार की खामियों की भी निशानदही करेगी जो इस्तेहसाल और धोखादही पर मबनी सरगर्मियों को फरोग दे सकती हैं। कमेटी इदारा जाती जवाबदही को मजबूत बनाने के लिए इस्लाहात की सिफारिश भी करेगी। ये आकाशवाणी है। हुकूमत ने डिस्प्ले असेंबलीज, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर क्वाइल मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाली अशिया पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है, जिसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक आलात जैसे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, वियरेबल्स और स्मार्ट टीवीज मुल्क में ही बनाए जाते हैं।

0: मीडियम दोन एफ एम चैनल लिखा छस आकाशवाणी करगिल न जरिंचुत वक्स बदर छन सानी तु सो तुर्गुन फैत सो सुकस्ता तु सो तुर्चु सखफा संग मैं तो तेरे गए इंतजाम में से सब बसने लें इंतजाम में से दाखून मोहम्मद बाकर जीशा निकनर संग मैं तो ठीक किया बिस्मिल्लाह
1: بسم الله الرحمن الرحيم